ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून 2026। श्रोताओं उपस्थित हैं हम अपनी आज की सभा के कार्यक्रमों के साथ।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं।

0: नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Realize the full potential of our ties.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले कर रहे थे अपने दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। विषय है आत्मविश्वास। आलेख RC प्रसाद सिंह का है।
4: आज की ये सुबह कितनी सुहावनी है। सुनहली धूप में सारी धरती खिल उठी है। धीरे धीरे बहती हुई हवा के झोंके आ रहे हैं। पेड़ों की हरी हरी पत्तियां मस्ती में झूम रही हैं। चिड़ियां चहक रही हैं। फूल और पौधे मानो खुशी से नाच रहे हैं। छोटे छोटे किलकारियां भरकर बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपका हृदय इस आनंद मेले को देखकर हर्ष का अनुभव नहीं करता? क्या इस विराट संगीत समारोह में भाग लेने के लिए आपका मन आतुर नहीं हो उठता? तो समझ लीजिए, आप अपने जीवन में अनायास प्राप्त एक महान अवसर से हाथ धो रहे हैं। आप आज की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आपका शरीर आज की दुनिया में भले ही हो, पर मन अतीत के भोगे हुए क्षणों में उलझा है या भविष्य के बीहड़ जंगलों में भटक रहा है। और यही वो सबसे बड़ी बाधा है जो हमें सुख चैन से जीने नहीं देती। हम वर्तमान को भोग नहीं सकते, लेकिन अनागत या अतीत के सपनों का निरर्थक दाना बुनने में अपनी सारी शक्ति खर्च कर डालते हैं। फिर वर्तमान को
5: अगर हम जीते भी हैं तो हारे थके मन से, मानो जीना नहीं चाहते, विवश होकर जीते। लेकिन ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई, अगर हुई भी तो उधार की हुई, अपनी नहीं। क्योंकि जहां स्वतंत्रता नहीं, जहां अपना कहने लायक भी कुछ नहीं, और जहां अपना कहने लायक कुछ नहीं हो, वहां भला सुखी कैसे मिल सकता है। कारण स्पष्ट है, जिंदगी सदा वर्तमान है, बीता हुआ कल मर चुका है, वो कभी लौटकर आने वाला नहीं, आगामी कल अभी आया नहीं, फिर हाथ में तो वर्तमान ही है। कोयल जब वसंत ऋतु में आम की डाली पर पंचम स्वर आलापती है, तब क्या उसके सामने अतीत की कोई घटना रहती है? या गुलाब के फूल जब बाग बागीचों में अपनी मुस्कान बिखेरते हैं, तब क्या वे भविष्य का कोई सुनहला स्वप्न देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके इस तरह सहज रूप से मुस्कुराने का रहस्य उनके वर्तमान पलों की तन्मयता में है। गुरुदेव रविंद्रनाथ को जब गीतांजलि नामक काव्य कृति पर नोबेल पुरस्कार मिला था, तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति उनके पास पहुंचकर बोला, क्या तुमने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जो तुमने अपनी कविताओं में बार बार उसके गुण गाए हैं? रविंद्रनाथ उस समय तो कोई उत्तर नहीं दे सके, किंतु वो वृद्ध व्यक्ति भी सहज ही पिंड छुड़ाने वाला नहीं था, बार बार आ जाता और उनसे वही प्रश्न कर बैठता। एक दिन की बात है, कवि गुरु प्रातःकाल के भ्रमण से लौट रहे थे कि उन्हें सहसा एक विराट दर्शन की अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि वर्षा ऋतु के जो बादल रात भर बरसे हैं, अभी आकाश से कहीं दूर चले गए हैं और चारों ओर सुनहली धूप भी हंस रही है। सूर्य का प्रतिबिंब हजार हजार टुकड़ों में नीचे धरती पर पानी से भरे अनगिनत जलाशयों पर पड़ता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिबिंब अपने आप में पूरा है, एक भी खंडित या विकलांग नहीं है, सब में पूरा सूर्य उतरा है। रविंद्रनाथ इस अद्भुत दृश्य को देखकर चमत्कृत से रह गए, उनकी प्रसन्नता का पारावार उमड़ पड़ा। जिस पथ से वो घर लौटते, उसी के किनारे वो वृद्ध व्यक्ति भी रहता था। सदा की भांति आज भी उसने कविवर को अपने घर के सामने से जाते देखा और देखते ही फुर्ती से दौड़कर उनको घेर लिया। किंतु इसके पहले कि वो अपने प्रश्न को दोहराए, रविंद्रनाथ की अपूर्व मस्ती भरी मुस्कुराहट को देखकर ही इतना मुग्ध हो गया कि उसके मुंह से निकल पड़ा, आज प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे मुखमंडल पर आनंद की आभा से ही मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। सचमुच वो दिन धन्य होता है जब हम आज की अनुभूति में आनंद विभोर हो जाते हैं। हमारा जीवन तभी सार्थक होता है, सही मायने में हम तभी जीते हैं।
3: आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था आत्मविश्वास, आलेख आरसी प्रसाद सिंह का था। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैचनिया।

अभी आप सुन रहे थे ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंदलाला नचावे उनकी मैया। आइए अब सुनते हैं ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया।

गजानन जननी तेरी जय हो, तेरी जय हो, विजय हो। सुनते हैं ये भक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 401 401।

गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी ज्ञान और भक्ति की मीमांसा कर रहे हैं। प्रश्न है, ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है? काकभुशुंडी कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में माया द्वारा प्रेरित रिद्धि सिद्धियां विघ्न उपस्थित करती हैं। माया के अतिरिक्त देवगण भी बाधाएं उत्पन्न करने में पीछे नहीं रहते। इंद्रियां झरोखों के समान होती हैं, जिनसे आती विषय वासना रूपी हवा के प्रवाह को रोकना बड़ा कठिन होता है। इन झोंकों से ज्ञान रूपी दीपक का बुझ जाना भी बड़ा सरल और स्वाभाविक है। इस दीपक के बुझते ही जीव आवागमन के क्लेश भोगने लगता है। संतों और ज्ञानियों का मत है कि ज्ञान मार्ग से मोक्ष रूपी परम पद पाना अत्यंत कठिन है, किंतु ये पद भक्ति मार्ग से बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान की आज की कड़ी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

7 बजे आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। 7:20 पर होगा परिवार कल्याण का कार्यक्रम घर संसार। 7:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी एल्बम के गीत कार्यक्रम होगा गीत संगीत। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने राज्य केंद्र से। 8:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे होगा कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 5:02 पर होगा कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग। 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेहनत कश। 6:30 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम छनकार। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आप सुन सकते हैं 7:23 पर। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:10 पर होगा हमारा विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। 8:45 पर समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज एट 9, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी चाहत। 10:30 पर होगा कार्यक्रम शामी गजल। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा।

ये थी आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। संस्कृत में समाचार के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नाम परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंक सत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अन्तिमां तिथिं जून मासस्य सप्तम दिनांक पर्यन्तं अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदन समर्पणाय अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य षष्ठः दिनांकः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चण्डीगढ़े भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडासमाप्तिपर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतं इतः अग्रे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले कर रहे थे अपने दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे शिवनंदन पांडे गरीब और साथियों के सर में कुछ लोकगीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुनते हैं शिवनंदन पांडे करीब और साथियों के स्वर में ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं परिवार कल्याण का कार्यक्रम घर संसार। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे डॉक्टर उद्दीपन कुमार से ली गई भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी देंगे दांतों की समस्या और हमारा स्वास्थ्य। इस संबंध में इनसे बातचीत कर रही हैं श्वेता रानी।
1: हम सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए दांतों की सुरक्षा या दांतों का सेहत भी बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से हमें दांतों की देखभाल करनी चाहिए ताकि हमारे दांत जो है वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है दंत चिकित्सक डॉक्टर उद्दीपन कुमार जी को। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: धन्यवाद श्वेता जी।
1: दांतों की सुरक्षा कितनी जरूरी है हमारे सेहत के लिए?
2: कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मुंह का होना बहुत आवश्यक है। कई बीमारियां जो है जो हमारे मुंह से शुरू होती है और वही आगे जाकर के बाकी शरीरों में फैल जाता है।
1: दांतों में आमतौर पर किस किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बुरा हो सकता है?
2: दांतों से संबंधित नॉर्मली तीन तरीके की बीमारियां देखी जाती है। एक वैसी बीमारियां जो सीधा हमारे दांतों के ऊपर में प्रभाव डालती है, जैसे कि कैविटी हो जाना दांतों में, जिसको कि जनरल टर्म में कीड़ा लगना कहते हैं। वो कैविटी बेसिकली हमारे मुंह में जो है सही तरीके से साफ सफाई नहीं रहने की वजह से होता है। दूसरा असर जो है हमारे मसूड़े पे पड़ सकता है, जो हमारे दांत के चारों तरफ जो है हड्डी होती है जो दांत के जड़ों को सही तरीके से पकड़ करके रखती है और उसके ऊपर में एक कवर होता है जिसको हम लोग जनरल टर्म में मसूड़ा कहते हैं। तो अगर हम साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उससे हमारे दांत के ऊपर में कीड़ा लग सकता है, मसूड़े के ऊपर में जो है सूजन आ सकता है, और अगर हम सही समय पे उसका उपचार ना करें तो वही मसूड़े का सूजन अंदर में हड्डी में लग जाता है, जिसको कि हम लोग पायरिया कहते हैं। तो इसलिए दांतों का सही रखरखाव करना बहुत आवश्यक।
1: आपने कहा कैविटी, बच्चों में तो चॉकलेट बिस्किट वगैरह ज्यादा खाने की वजह से हो जाती है, बड़ों में किस वजह से ये होती है?
2: जो हम लोगों का अपब्रिंगिंग है या बचपन से जो है हम लोगों का पालन पोषण है, उसमें दांतों के संबंध में, उसके रखरखाव के संबंध में सही तरीके से माता पिता को पता नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि शुरू में हमारा दूध का दांत निकला है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो डेंटिस्ट को तब तक कंसल्ट नहीं करते हैं जब तक कि वो बहुत बड़ा न हो जाए बीमारी और वो किसी तरीके से आपको तकलीफ न पहुंचाने लग जाए। तो सबसे पहला सलाह जो हम सारे श्रोताओं को देना चाहेंगे वो ये है कि दांतों के लिए सबसे पहला कंसल्ट डेंटिस्ट के पास तब आना चाहिए जब आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, लाइक माता के प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज उस दौरान जो है अगर माँ के मुंह का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो उसका कई सारा कुप्रभाव आने वाले बच्चे के ऊपर में पड़ता है। जैसे अगर बच्चे का वेट कम होगा, कुपोषण का शिकार हो सकता है, अगर मुंह का इन्फेक्शन है तो उससे जो है कई सारी और भी बीमारियां पैदा हो सकती है। तो जिसके बारे में सही जानकारी होना आवश्यक है, और इसीलिए जब आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो उसी वक्त एक बार अपने डेंटल चेकअप के लिए जरूर आना चाहिए।
1: तो किस किस के कारण आमतौर पर दिखाई देते हैं जब गर्भावस्था में होती है महिलाएं?
2: देखिए, जब आप बच्चे का प्लानिंग करते हैं उसी समय आने की सलाह हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि मान लीजिए गर्भावस्था के दौरान आते हैं, आपको कोई दांतों की परेशानी होती है, दर्द होता है किसी दांत में, और उस समय आप आते हैं और अगर आप मान लीजिए आपके दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए एक्सरे लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो हम उस समय नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसका बुरा असर गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर।

0: में पड़ता है। तो इसीलिए आप बच्चे के प्लानिंग के समय में ही डेंटिस्ट को दिखाइए, ताकि गर्भ धारण करने से पहले ही आपके मुंह के सारे बीमारी का सही निवारण किया जा सके। गर्भ के दौरान जो है बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आते हैं महिलाओं में, जिसके वजह से आमतौर पर मसूड़े में सूजन आ जाता है। देखिएगा, मसूड़े में खून आने की शिकायत हो जाती है, उसके लिए सफाई की आवश्यकता पड़ती है। बट कहा यह जाता है कि पहले 3 महीने में जब गर्भ जो है सही आकार ले रहा होता है, तो उस दौरान किसी भी प्रकार का डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए। और उस दौरान अगर आपको दर्द भी है, तो हम बहुत सारी दवा भी आपको नहीं दे सकते हैं।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अक्सर पायरिया से जो लोग ग्रसित होते हैं, मुंह से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, तो वो किस तरह की बीमारी है और उसमें किस किस तरह के लक्षण आमतौर पर दिखाई देते हैं, और पायरिया जब हो जाए तो हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: देखिए, मैंने आपको बताया कि मुंह के सारे बीमारी का मेन कारण है मुंह का सही साफ सफाई नहीं रहना। अगर आपके मुंह में गंदगी रहती है, वो गंदगी आपके दांतों के आसपास में जमा होती है, उसके ऊपर में एक लेयर के जैसा जम जाता है, जिसको कि हम लोग आमतौर के भाषा में प्लाक कहते हैं। उसी प्लाक में बहुत सारे विषाणु और रोगाणु, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, वो उत्पन्न होते हैं, और उससे जो केमिकल सिक्रीट होता है, उसकी वजह से हमारे मसूड़े में सूजन आ जाता है। अब अगर वो मसूड़े में सिर्फ सूजन रहे और अंदर के हड्डी को नहीं, मान लीजिए, अफेक्ट करे, तो उसको हम लोग जनरल बोलचाल की भाषा में जिंजिवाइटिस कहते हैं। मतलब आपका इन्फेक्शन मसूड़े तक ही सीमित है। और अगर आप उस दौरान आप अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं, तो सही सफाई करने से, जिसको कि स्केलिंग कहते हैं, स्केलिंग कराने से जो है वो गंदगी हट जाता है, और उसके बाद आप सही तरीके से घर पे अगर आप ब्रश करते हैं, सही तरीके से देखभाल करते हैं, तो बीमारी वापस नहीं आता है। लेकिन अगर आप उसी को नेग्लेक्ट करते हैं, लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट नहीं करते हैं, तो वही जिंजिवाइटिस वाली बीमारी आगे जाकर के हड्डी में पकड़ लेती है, और उसी को पायरिया, या हम लोग डॉक्टरी भाषा में जिसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, उसमें तब्दील हो जाता है, जिसमें कि आपके मसूड़े से खून के अलावे मवाद आने लगता है, दांत हिलने लग जाता है, कमजोर हो जाता है, और धीरे धीरे वो कमजोर होकर के गिर जाता है।
1: दांतों से खून आने लगता है और कमजोर होकर के दांत गिरने भी लग जाते हैं। ये समस्या आमतौर पर मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनमें भी दिखाई पड़ती है, और भी किस तरह के लक्षण होते हैं और उससे किस तरह की देखभाल की जरूरत होती है?
0: मधुमेह के जो पेशेंट है, उनको आमतौर पर अपने मुंह की देखभाल नॉर्मल लोगों से ज्यादा करनी चाहिए। उनका डेंटल कंसल्टेशन हर एक 6 महीने में होना चाहिए। जैसे वो शुगर की जांच नियमित रूप से कराते हैं, उसी तरीके से दांतों की जांच करनी भी आवश्यक है। खास करके वैसे शुगर के पेशेंट में जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके शरीर के कई अंगों पर प्रभाव डालती है। मैंने आपको बताया कि दांत जो है हमारे जड़ के चारों तरफ हड्डी से वो मजबूती के साथ पकड़ा रहता है, तो अगर आपका शुगर का लेवल बहुत फ्लक्चुएट करेगा, तो उसका बुरा प्रभाव उस हड्डी के ऊपर में पड़ता है, दांत के ऊपर में ज्यादा नहीं पड़ता है, और वो पकड़ जो है धीरे धीरे हड्डी गलने की वजह से कमजोर हो जाती है, और ऐसे लोगों में पायरिया की शिकायत ज्यादा देखी जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए ज्यादा जरूरी यह है कि आप डेंटिस्ट की सलाह ले ही लें, साथ में अपने शुगर को जो है कंट्रोल में रखें, नियमित जांच कराते रहें और अकॉर्डिंगली दवा खाते रहें।
1: टेढ़े मेढ़े जो दांत हो जाते हैं सर, वो किस कारण से होते हैं, और उसे सीधा करने के लिए लोग दांतों में क्लिपिंग करवाते हैं, तो वो क्लिपिंग से कुछ दांतों में बुरा असर होता है?
0: हमारे पुराने जमाने में हमारे दादा दादी नाना नानी वो सजेस्ट करते थे हमेशा, देखिएगा कि खाने के लिए स्वस्थ खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फल फूल खाइए, उससे हमारे दांत जो है मजबूत रहते हैं। जितना फल खाएंगे, जो थोड़ा कड़ा होता है वैसा फल खाएंगे, तो एक तरीके से हमारे दांतों का एक्सरसाइज होता है, और वो हमारे दांतों की मजबूती को बरकरार रखता है। साथ में नियमित रूप से दूध का सेवन जरूर करें, जो कैल्शियम का मेन सोर्स है। अगर कैल्शियम की कमी आपके शरीर में होगी, तो उसका बुरा असर दांत जब बन रहा होता है उस दौरान दांतों के ऊपर में भी दिखता है, साथ ही में जो चारों तरफ उसकी जो हड्डी होती है उसके ऊपर में भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा दांत जो है वो कमजोर बनता है। जो आप उबड़ खाबड़ वाले दांतों के बारे में बोल रहे थे, वो मेनली जो है जेनेटिक है, अनुवांशिक जिसको कहते हैं। अगर मदर फादर का दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो वही सेम चीज आप देखिएगा बच्चों में भी होता है। उसका कैल्शियम से कोई लेना देना नहीं। पुराने जमाने में लोग इतना ध्यान नहीं देते थे दांतों पे, वो उसको नेग्लेक्ट करके रखते थे, लेकिन आजकल के बच्चे ज्यादा कॉन्शियस हैं और वो इसको अपने पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं। तो इस वजह से आजकल दांत को सीधा कराने के लिए बहुत सारे पेशेंट उत्सुक रहते हैं, जिसको कि क्लिपिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर क्लिपिंग सही तरीके से उपचार हो, तो उसका कोई दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर में नहीं होता है, और वो दांतों को सही तरीके से अलाइन करने में हेल्प करता है।
1: कैविटी की आपने बात कही थी सर, तो कैविटी की वजह से कई बार दांत निकलवाना पड़ जाता है, तो निकलवाने के बाद बहुत सारी सावधानियों की जरूरत होती है, तो वो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, और फिर जो नए दांत लगवाए जाते हैं उसमें किस तरह की सावधानियों की जरूरत होती है?
0: देखिए, मैं इस बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक चीज पे बहुत जोर देना चाहूंगा कि आप निकलवाने से पहले ये कोशिश करना है कि हमारे दांत के अंदर में जो है कीड़ा लगे ही नहीं। बचाव जो है बहुत जरूरी है। अगर आप बचाव करके रखेंगे, तो दांत हमारा लंबे समय के लिए मजबूत रहेगा। असली दांत का कोई रिप्लेस रिप्लेसमेंट नहीं है।

0: है, उसकी मजबूती जो है आप किसी भी आर्टिफिशियल चीज से सेम मजबूती आप रिगेन नहीं कर सकते हैं। तो जहां तक संभव हमें असली दांत को बचा करके रखना है। हम लोग क्यों नियमित जांच पे जो है स्ट्रेस देते हैं, हम कहते हैं कि आप नियमित जांच कराइए दांतों की, क्योंकि अगर आपके दांत में कीड़ा लगा तो वो शुरू में बहुत छोटा होगा, सही समय पे अगर आप डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो बिल्कुल शुरुआती समय में ही वो पकड़ में आ जाएगा। डेंटिस्ट नॉर्मली उस कीड़ा लगे भाग को काट के हटा देते हैं और उसकी जगह पे दांतों की भराई कर देते हैं सीमेंट जैसे पदार्थ से, और वो कीड़ा आगे नहीं बढ़ता है। अगर आप सही समय पे नहीं आते हैं डेंटिस्ट के पास तो धीरे धीरे अपने आप बड़ा होता जाएगा और एक समय आएगा जब वो अंदर की नस को पकड़ लेता है, उस दौरान आपको दांतों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कीड़ा लगा हुआ जो कैविटी है वो बड़ा हो जाता है, तो दांतों की मजबूती पहले से कम हो जाती है, तो आपको तकलीफ बढ़ जाएगी, आपकी मजबूती कम हो जाएगी जितना ज्यादा आप नेग्लेक्ट करेंगे। और वैसी स्थिति में दांतों में दो तरीके के इलाज की आवश्यकता पड़ती है, या तो आपको दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है या दांत निकलवाना पड़ जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट वाले स्टेज में अगर दांत है तो दांत में आरसीटी करके अंदर के इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है और उसके ऊपर में कैप देके दांत के मजबूती को बरकरार रखा जा सकता है और दांतों को लंबे समय तक चलाया जा सकता है। अगर किसी कारणवश दांतों को बचाया ना जा सके तो दांत को निकलवा दिया जाता है और उसके जगह पे असली दांत के जैसा रिप्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जो कि हम लोग बोलचाल की भाषा में इम्प्लांट कहते हैं या दंत रोपण कहते हैं। तो अभी आजकल दंत रोपण की प्रक्रिया या इम्प्लांट की प्रक्रिया सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसका रीजन ये है कि वो दांतों को एकदम असली दांत के लगभग बराबर मजबूती से वो रिप्लेस कर सकता है या उसके जगह पे एक नया दांत दे सकता है। जब दांत निकलवाया जाता है तो निकलवाने से पहले कुछ टेस्ट कराने चाहिए, जैसे आप शुगर के पेशेंट तो नहीं है, हार्ट के पेशेंट तो नहीं है, अगर है तो वो चीज पहले से अपने डेंटिस्ट की जानकारी में दें, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव, देखिए हमारे दांतों का सीधा संबंध हमारे हार्ट से होता है, अगर दांत में इन्फेक्शन होगा और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो उस इन्फेक्शन को हार्ट तक पहुंचने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी वजह से अगर आप पहले से देंगे इस बात की जानकारी तो आपके डेंटिस्ट अकॉर्डिंगली जो है दवा चला करके उस इन्फेक्शन को कम करने की पहले से ही कोशिश करेंगे, जिसमें कि नॉर्मली हम लोग एंटीबायोटिक का कोर्स कराते हैं तब उसके बाद दांत निकालने के लिए पेशेंट को बुलाते हैं। दांत निकलवाने के बाद गर्म खाना नहीं खाना चाहिए दो दिनों के लिए, जोर से कुल्ला नहीं करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से जहां पे दांत निकला है वहां से वो खून का थक्का वो किसी भी तरीके से हिले नहीं, नहीं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाता है या खून का।
1: कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि दांत कई बार हिस करके छोटे हो जाते हैं समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, तो दांतों की मजबूती बरकरार रहे और एक हद तक बहुत अच्छे रह पाए दांत हमारे, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए?
0: देखिए हमारा शरीर नश्वर है, अगर हमारा सारा शरीर जो है उम्र के साथ कमजोर पड़ता है तो इसी तरीके से दांत भी उम्र के साथ कमजोर होंगे ही होंगे। एक सर्टेन रेट से दांत का घिसना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर घिस जाए, जो कि खास करके ऐसे पेशेंट में देखा जाता है जो सुपारी खाते हैं, पान मसाला खाते हैं या पान खाते हैं, तो वैसी स्थिति में दांतों में कैपिंग कराने की आवश्यकता पड़ती है ताकि दांतों की हाइट को बरकरार रखा जा सके, उसकी मजबूती को बरकरार रखा जा सके, ताकि आप सही तरीके से खान पान कर सके।
1: तो डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय दिया और दांतों की सुरक्षा बहुत अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आप धन्यवाद।
0: धन्यवाद श्वेता जी।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उद्दीपन कुमार से ली गई भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी दे रहे थे दांतों की समस्या और समाधान के बारे में। इनसे बातचीत कर रही थी श्वेता रानी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम है गीत संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम गीत संगीत में आइए सुनते हैं अभिजीत के स्वर में ये गीत।

सोनू निगम के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया।

0: पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती

0: लोग के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
5: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। जेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
6: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
7: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
8: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट, नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSS Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
11: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on fake currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
12: For Akashvani News, Shuman Bhattacharji, Agartala.
10: The National Testing Agency or NTA has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report.
13: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to fall prey to the fraudulent solicitations. The agency has also urged all aspirants to ignore the rumors and to rely solely on official communication issued by NTA through its verified website and channels. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
10: Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel has said that the government is committed to fostering a digital health ecosystem in the country. In an exclusive interview with Akashwani News, the minister said that India has created over 90 crore unique Aabha identity cards under Ayushman Bharat digital mission and over 100 crore digital medical records have been linked to these Aabha IDs. The full interview will be broadcast in our special series 12 Years of the Modi Government today at 7:10 p.m. on 100.1 MHz Akashwani FM Gold and additional frequencies. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the BJP government will undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state, such as Dakshineshwar and Kalighat temples. He said work has already commenced to elevate the Ganga Sagar Mela to international standards, while facilities at prominent religious landmarks like Dakshineshwar and Kalighat will be significantly upgraded. Speaking at a program in Kolkata, Mr. Adhikari said grant arrangements will be made for the upcoming Shrabani Mela at Tarakeshwar. Hitting out at the previous Trinamool Congress administration, the Chief Minister alleged that West Bengal suffered from acute lack of employment opportunities and systemic corruption over the past 15 years. Describing West Bengal as a sacred spiritual land, Mr. Adhikari said the era of appeasement, lawlessness and lack of investments is now over. Mr. Adhikari emphasized that the alignment of the state government with the centre will accelerate development, as he cited a series of central government projects being implemented in West Bengal. Prime Minister Modi chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. Various reforms to improve ease of living and ease of doing business were also discussed. In a social media post yesterday, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AI News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. External Affairs Minister S. Jayashankar virtually handed over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal under the reconstruction program post the 2015 earthquake, after meeting with his visiting Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. The two leaders jointly launched the linkage between UPI, Unified Payments Interface India, and the National Payments Interface of Nepal for facilitating cross-border personal remittances. Both leaders also witnessed the exchange of a Memorandum of Understanding between Digital India Bhashini and Kathmandu University for co-creating the national digital infrastructure for a voice-first language translation platform for Nepal. In his opening remarks during the meeting with Mr. Khanal, External Affairs Minister said that India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need.
2: India and Nepal share a very special relationship built on a strong foundation of vibrant people-to-people ties, cross-border connect, and shared cultural and religious traditions. It is anchored by shared trust, goodwill, and mutual benefit, and our bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development cooperation, education, disaster response, and culture. We have an opportunity to also take it forward in many other areas, in newer domains like startup, AI, information technology, renewable energy, and others.
10: In his initial remarks, Mr. Khanal said, India is Nepal's most important partner, and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries, but stakeholders of a proud ancient civilization. The Foreign Affairs Minister of Nepal thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Indonesian Foreign Minister Sugiyarto has arrived in New Delhi to co-chair the 8th India-Indonesia Joint Commission meeting with External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. The External Affairs Ministry, in a social media post, said that during the meeting, the two ministers will review the robust, comprehensive strategic partnership between India and Indonesia and will discuss ways to further deepen bilateral cooperation. The International Air Transport Association, IATA, has said that India is a significant player in the growth story of air traffic in the Asia-Pacific region, where the number of air passengers is projected to reach 4.1 billion by 2044. Speaking at a briefing in the Brazilian city yesterday, IATA's Regional Vice President for Asia-Pacific, Sheldon He, said that India has been a significant contributor to the region's aviation growth story over the past several years. He noted that India is one of the world's fastest growing domestic civil aviation markets. He added that growth in the Asia-Pacific region has been strong over the past 5 to 10 years and is expected to remain robust over the next decade. In Kerala, 7 districts are under orange alert, indicating isolated very heavy rainfall. More from our correspondent.
14: The northern districts of Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod in Kerala are under orange alert today, indicating isolated very heavy rainfall. Yellow alert has been declared in the remaining 7 districts, indicating isolated heavy rainfall. Intensive rainfall is expected to continue in Kerala on Monday as well. Rainfall up to 15 mm has been reported from almost all the observatories across Kerala this morning. Fishing activities have been banned along the coastal areas of Kerala. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
10: Meanwhile, India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall at isolated places over coastal Karnataka, Kerala and Mahi today. Parts of northeast India, the Andaman and Nicobar Islands, Karnataka, Konkan and Goa, Lakshadweep, Maharashtra, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu and Puducherry are also likely to experience rainfall during the day. The price of domestic LPG cooking gas has been increased by 29 rupees per 14.2 kilogram cylinder. With effect from today, domestic LPG in Delhi will cost 942 rupees, rising from the earlier 913 rupees. In the SAF Women's Championship 2026 final, India defeated the defending champions Bangladesh 3-1 to win the title for a record 6th time. The match was played in Madgaon, Goa yesterday. After 7 years, the Blue Tigresses have once again lifted the trophy. A report.
15: In the SAF Women's Championship 2026 final played in Madgaon, Goa, India defeated Bangladesh 3-1 to win the title for a record 6th time. With this victory, the Indian women's team has brought the prestigious trophy back after 7 years. From the very start of the final, both teams played with strong intensity. In the first half, India took the lead through a goal by Pyari Jaksa. However, Bangladesh equalized with a goal from Rituporna Chakma. At the half-time, the score was 1-1. In the second half, India dominated the game. Sansida scored a brilliant goal to put India ahead once again, and Linda Com added the third goal to seal the win. After that, Bangladesh could not make a comeback, and India won the match 3-1. Throughout the tournament, the Indian team showed excellent performance and they continued their strong form in the final. The Blue Tigresses ended their campaign with a memorable victory. For Akashwadi News, Nikhil Upadhyay from Panji.
10: In the one-off test against Afghanistan, India will resume play at 368 for 3 in the first innings on day 2 in New Chandigarh today. Centuries from KL Rahul and Captain Shubman Gill, who remains unbeaten on 103, have put the men in blue in a strong position. Sai Sudarshan also contributed 81 before missing out on a maiden test century, while Rishabh Pant remained unbeaten with a brisk half century. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
16: Thank you, Saira. Newspapers have noticed a variety of stories today, including the flare-up in tensions in the West Asia conflict. Sunday Pioneer writes, PM reviews economic roadmap, adding India must continue its development agenda despite global challenges. While the Sunday Statesman headlines, PM reviews economic strategy amid West Asia uncertainty. Cockroach

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में बढ़ी सियासी सरगर्मी। झामुमो से बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा समेत अब तक कुल 6 उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन पर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड दौरे का दूसरा दिन, कई संगठनात्मक कार्यक्रम में लेंगे भाग। बोकारो में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से करेंगे संवाद। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड में जल्द स्थापित होगा सेंट्रल रेडियोलॉजी हब। सरकारी अस्पतालों को मिलेंगी विशेषज्ञ सेवाएं। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए। पारदर्शिता और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना उद्देश्य। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज से अगले 4 दिनों के लिए आंधी के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। 18 जून को राज्य की 2 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा और राज्य से 2 बार सांसद रहे परिमल नथवानी समेत अब तक कुल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा खरीदा है। भाजपा ने अब तक अपने प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन की आखिरी तारीख है। झामुमो द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास में पार्टी विधायकों और सांसदों की अनौपचारिक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास जताया कि बैद्यनाथ राम राज्यसभा में झारखंड की जनता की आवाज को मजबूती से उठाते हुए राज्य के हितों की प्रभावी पैरवी करेंगे। वहीं बैद्यनाथ राम ने पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर महागठबंधन की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद अजय शर्मा ने गठबंधन को मजबूत बताते हुए कहा कि सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री और झामुमो नेतृत्व से सकारात्मक बातचीत हुई है। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि महागठबंधन में कोई गतिरोध या गलतफहमी नहीं है और गठबंधन राज्यसभा की 2 सीटों पर जीत दर्ज करेगा।
1: हेमंत जी से मुलाकात हुई।

0: विस्तार से चर्चा हुई है और गठबंधन की दोनों सीटें हम जीतेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और खुल के बात हुई है और दोनों से हम जीतेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने दो दिवसीय झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज बोकारो स्टील सिटी में पार्टी कार्यकर्ता प्रीतम सिन्हा के आवास पर जाएंगे, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नेताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद वे ओरमांझी के कुचू स्थित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर जाएंगे। तत्पश्चात वे रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय लौटेंगे, जहां जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा प्रदेश मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी सेल के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही सेंट्रल रेडियोलॉजी हब CRH की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य के सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ रेडियोलॉजी सेवाओं से जुड़ेंगे। इस व्यवस्था के तहत एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI जैसी जांचों की रिपोर्ट विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट केंद्रकृत प्रणाली के माध्यम से तैयार करेंगे, जिससे रिपोर्ट की गुणवत्ता और उपचार की गति में सुधार होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि यह छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है, उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आहार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने रिम्स 2 विवाद मामले में जन आंदोलन का ऐलान किया है। रांची में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जमीन बचाने के लिए 10 दिन के भीतर लाखों आदिवासी सड़क पर उतरेंगे।
2: जमीन संघर्ष समिति जो पिछले बार आह्वान किया था, इस बार भी आह्वान कर रहा कि यहाँ लाखों की संख्या में आएंगे और ये आदिवासी विरोधी मूलवासी विरोधी सरकार को एक बड़ा जन आंदोलन को सामना करना पड़ेगा। न्यायालय का दरवाजा भी जाएगा यहाँ का दर्द कि हम क्या इस रांची अंचल में आदिवासी पैदा होना क्या गुनाह है।
1: इधर भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व विधायक सीता सुरेन ने नगड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि वह किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था।
3: आदित्यपुर का रहने वाला है, वो कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही हमारी टीम द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसे पकड़ लिया गया और उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा गोली भी उसके पास से प्राप्त हुई।
1: झारखंड के ऊपर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरने के कारण राज्य के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक कहीं कहीं आकाश में बादल छाए रहने, तेज हवा चलने, मेघ

0: गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। यह मैच कल गोवा के मडगांव में खेला जाएगा। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव की बड़ी हलचल की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर के शब्द हैं, राज्यसभा चुनाव झारखंड में रोमांच बढ़ा, हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए राजनीतिक मैदान तैयार। हिंदुस्तान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के झारखंड दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लिखा है, संगठन की मजबूती के दिए मंत्र, मिशन 2029 पर मंथन। दैनिक जागरण लिखता है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सिविल जज भर्ती परीक्षा पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में बढ़ी सियासी सरगर्मी। झामुमो से बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा समेत अब तक कुल 6 उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन पर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड दौरे का दूसरा दिन, कई संगठनात्मक कार्यक्रम में लेंगे भाग, बोकारो में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से करेंगे संवाद। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड में जल्द स्थापित होगा सेंट्रल रेडियोलॉजी हब। सरकारी अस्पतालों को मिलेंगी विशेषज्ञ सेवाएं। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए, पारदर्शिता और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना उद्देश्य। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज से अगले 4 दिनों के लिए आंधी के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। एक मुसाफिर एक हसीना, सुनते हैं इस फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: छोटी सी बात, सुनते हैं इस फिल्म का गाना आशा भोसले और यशोदास की आवाज में।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम चित्रलोक के कुछ और गीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक। अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जावेद अली की आवाज फिल्म राज 3।

गीत और संगीत था राशिद खान का, जावेद अली को आपने सुना, फिल्म थी राज थ्री। श्रोताओ, आज सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता राव का जन्मदिन है, उन्हें विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई टीवी विज्ञापनों और संगीत वीडियोस में भी काम किया। उन्होंने 2002 में फिल्म अब के बरस से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फीमेल रिव्यू का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क में उनकी कॉलेज गर्ल की जो भूमिका थी उसने घर घर उन्हें लोकप्रिय बना दिया। मैं हूं ना जो 2004 में रिलीज हुई, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में संजना के उनके किरदार ने दर्शकों का दिल जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया। 2007 में उन्होंने तेलुगु फिल्म अतिथि में महेश बाबू के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मस्ती जो 2004 में रिलीज हुई, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2016 में प्रसिद्ध रेडियो जॉकी अनमोल सूद से अमृता राव परिणय सूत्र में बंधी।

आपके भरोसे फिल्म का गीत आपने सुना शान और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, समीर के बोल थे। विविध भारती से इस वक्त श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

जैस्मिन सेंडलास और सतेंद्र सरताज की ये आवाज़ें आपने सुनी। सतेंद्र सरताज और जैस्मिन का लिखा ये नगमा था, शाश्वत सचदेव का संगीत था, धुरंधर द रिवेंज इस फिल्म का गीत आपने सुना। श्रोताओं, आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई ताकि खाद्य सुरक्षा के वैश्विक महत्व को उजागर किया जा सके। खेतों से लेकर हमारी थाली तक पहुंचने के बीज का की जो प्रक्रिया है वो बेहद सुरक्षित रहे, दूषित भोजन खाने से बचें जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि इससे कुपोषण और गंभीर पेट की बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। असुरक्षित भोजन में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या हानिकारक रसायन भी हो सकते हैं। खाना पकाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं, भोजन को उचित तापमान पर संरक्षित किया जाए। खाद्य सुरक्षा केवल हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी तो है ही, साथ साथ भारत में जो भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए FSSAI जैसी संस्थाएं काम करती हैं। सुरक्षित भोजन का सेवन हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, बीमारियों से हम दूर रहें, न सिर्फ स्वास्थ्य हमें जीवन प्रदान करता है बल्कि एक कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी भी बहुत कुछ महफूज रहती है। तो खाद्य सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहें।

0: अरमान मलिक की आवाज थी, साथ ही नीति मोहन को भी आपने सुना। रश्मि विराग के बोल थे, अरमान मलिक का संगीत था हेट स्टोरी 3 फिल्म का, ये गीत आपने सुना।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ लेते हैं इजाजत कार्यक्रम चित्रलोक से। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को नमस्कार।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
0: साथियों, आज मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ कहना है। निर्देशक, लेखक, पटकथाकार, पत्रकार और उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में।

0: 7 जून 1914 को पानीपत हरियाणा में जन्म हुआ ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फिल्म, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक समान दखल था, इसलिए ये बड़ी मुश्किल सी बात है कि हम आज उनकी प्रतिभा के किस पहलू पर ज्यादा बात करें।
1: दिल का हाल सुने दिल वाला,

0: पुलिस वाला दिल का हाल सुन दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कहके रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुन दिल।
1: बात शुरू करते हैं अब्बास साहब के जन्म के समय की, जबकि वो अंग्रेजों के शासन का समय था। तब 1914 में अब्बास साहब का जन्म पानीपत के एक मशहूर उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के यहाँ हुआ, जो कि मिर्जा गालिब के शिष्य थे।

0: ये फिजाएं बुला रही।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास यानी के ए अब्बास के दादा ख्वाजा गुलाम अब्बास ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा हाली मुस्लिम हाई स्कूल में ली और फिर 1933 में अंग्रेजी में बीए और 1935 में एलएलबी की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ली।

के ए अब्बास साहब ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की और फिर 1936 में वो पार्ट टाइम पब्लिसिस्ट के रूप में जुड़ गए बॉम्बे टॉकीज से और इसी प्रोडक्शन हाउस के लिए उन्होंने 1941 में पहली बार स्क्रीन प्ले लिखा। फिल्म थी नया संसार।

0: फिल्मों से जुड़ने के साथ साथ अब्बास साहब उस दौर के लगभग सभी बड़े अखबारों में कॉलम लिखा करते थे और साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम अपना शुरू कर दिया था। चेतन आनंद की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म नीचा नगर और वी शांताराम की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी उन्हीं ने लिखी थी।
1: अपने मरीजों में एक नई बीमारी फैल रही है फोड़े की तरह, अगर ये ज्यादा फैल गए तो इसका नतीजा निहायत खौफनाक होगा। अपने जिस्म में दाखिल करूंगा जिससे पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत पर इसके जहर का कैसा असर होता है।
2: चीं, चीं, मेरा जख्म अच्छा हो रहा है, नई दवा कारगर साबित हुई, मिल गया, मिल गया, सालिम फोड़े का इलाज मिल गया।

0: ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1945 में पहली फिल्म निर्देशित की धरती के लाल। 1951 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपना बैनर स्थापित किया नया संसार, जिसके अंतर्गत लगातार फिल्मों का निर्माण किया जाता रहा। 1953 में अनहोनी, मुन्ना और राही ये फिल्में बनी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली उनकी 1964 की फिल्म थी शहर और सपना। 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई फिल्म सात हिंदुस्तानी, जिसने जीता नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। और यहाँ हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि यही वो फिल्म थी जिसके जरिए आज के महानायक अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर शुरू हुआ था।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से मेरी पहली मुलाकात मुंबई में हुई, ये उस सिलसिले में हुई जिसमें वो कुछ नए कलाकारों को ढूंढ रहे थे, नए चेहरों को ढूंढ रहे थे अपनी आने वाली फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए। मैं उन दिनों कलकत्ते की नौकरी छोड़ करके दिल्ली आया हुआ था, और जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं अब्बास साहब से मिलने यहाँ बम्बई आया, जुहू तारा रोड पर उनके अपार्टमेंट में जहाँ पर वो अपना लेखन वगैरह किया करते थे, वहाँ उनसे मिलने गया। एक आधा घंटा मिलने के बाद मैं जब नीचे आया तो उनके असिस्टेंट थे तीनू आनंद, जो कि बाद में जा करके सत्यजीत रे के असिस्टेंट बने, उन्होंने आकर के मुझे नीचे बताया कि अब्बास साहब ने आपकी जो तस्वीर देखी और आपसे जो मुलाकात हुई वो उनको पसंद आई, और मेरी शुरुआत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ। उनकी सोच जो थी वो एक बहुत ही आम आदमी की सोच होती थी। उनके मन में ये था कि ये जिस तरह से उनके किरदार या जो चरित्र उन्होंने लिखे थे इस फिल्म के बारे में, जिस तरह से वो गुजरे होंगे या जिस तरीके से उन्होंने अपना ये जीवन व्यतीत किया होगा, उसी तरह से उनके कलाकारों को भी फिल्म में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से एक थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में गाड़ी में बैठ करके हम लोग गोवा गए, और रास्ते में जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता गया, अगर किसी सर्किट हाउस में जंगल के बीच कहीं एक मकान मिल जाता था तो वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल में पूरा कास्ट और पूरे वर्कर्स सब एक साथ वहाँ ज़मीन पे हम लोग सोते थे, और सभी एक किस्म का खाना खाते थे, एक ही कमरे में सब लोग रहते थे, एक ही साथ, कोई भेदभाव नहीं था। एक उनका एक बहुत ही सोशलिस्टिक और मॉरल इशू था ये उनके जीवन में।
0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम पुरस्कारों से ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को नवाजा गया। 1969 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्मी दुनिया में जहां अनेकों फिल्मों के लिए लेखन किया, उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन पैरेलल सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा कहा जाता है, वहीं ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि अब्बास साहब की ट्यूनिंग फिल्मकार राज कपूर के साथ बहुत अच्छी थी।
2: मुंबई में सब बहरे बसते हैं क्या?
3: बहरे भी और अंधे भी, इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवा रुपयों की झनकार के। मेरे भाई बम्बई, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के। यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा। मगधरा सामने से हटके खड़े हो, मेरे भाई धंधे का टाइम है। माई
2: धंधा यानी कि काम ना है? काम जो भाई, तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए?
3: जो मैं करता हूँ, भीख मांगनी चाहिए।
2: नहीं कोई काम बताओ मुझे, काम बताओ।
3: तो सोचना पड़ेगा, कुछ पढ़ा लिखा है?
2: ये पास सच कर, ये देखो मेरी डिग्री, साथ साथ ये फिरता हूँ मैं, ये देखो, ये देखो।
3: ईमानदार हो?
2: सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल, ये देखो।
3: जवान हो, मेहनत कर सकते हो?
2: डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ, कोई करा के देख ले।
3: तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता?
2: काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं?
3: ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर, यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420।
2: थैंक यू बॉस, थैंक यू।

ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम कभी रुकी नहीं। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो मुंबई के लोकप्रिय अखबारों ब्रिट्स और क्रॉनिकल के लिए कॉलम लिखते रहे। 1 जून 1987 को 72 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

सभी सुनने वालों को माधवी का नमस्कार कहती हूँ आप सभी से। हेलो हजारीबाग, आज की इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और उत्साह से भरपूर होंगे। दोस्तों, जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी चुनौतियों के बादल। लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, वही हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। दोस्तों, हमारे अच्छे विचार, हमारे अच्छे कर्म और हमारा सकारात्मक व्यवहार ही हमारी पहचान बनते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ केवल अच्छा सोच लेना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में उम्मीद और समाधान ढूंढना है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्य करने की ऊर्जा बढ़ती है और जीवन अधिक सुंदर प्रतीत होता है। दोस्तों, हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा अवश्य होता है। इसलिए हमें छोटी छोटी खुशियों को पहचानना और उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, हर सुबह यह विश्वास लेकर उठना चाहिए कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। वास्तव में आशा और सकारात्मकता ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन मजबूत होता है तो रास्ते स्वयं बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह विचार हमें सिखाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आइए मिलकर आनंद उठाते हैं इस गीत का।

उम्मीद करते हैं गीत आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, हर वर्ष 7 जून को पूरे विश्व में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करना तथा खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है और अच्छा स्वास्थ्य तभी संभव है जब हमारा भोजन सुरक्षित हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर वर्ष करोड़ों लोग दूषित भोजन के कारण बीमार पड़ जाते हैं। भोजन में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, रसायन या अन्य हानिकारक तत्व हमारे स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है यह संदेश देना कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। इस वर्ष का संदेश है खाद्य सुरक्षा, विज्ञान की प्रभावी भूमिका। यह हमें बताता है कि वैज्ञानिक शोध, प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से हम भोजन को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा क्या है? सरल शब्दों में कहें तो खाद्य सुरक्षा का मतलब है ऐसा भोजन जो खाने योग्य हो, जिसमें किसी प्रकार का संक्रमण या हानिकारक पदार्थ ना हो और जो स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकार या खाद्य विभाग की नहीं है। किसान से लेकर दुकानदार और उपभोक्ता तक हर व्यक्ति की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको पता है, यदि हम असुरक्षित भोजन का सेवन करेंगे तो फूड पॉइजनिंग, दस्त और उल्टी, टाइफाइड, हैजा, पीलिया और पेट संबंधी संक्रमण, विशेष रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में अपने कार्यक्रम में हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल आइए आपको लिए चले मनोरंजन की दुनिया में, सुनते हैं एक गाना।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षित भोजन के लिए 5 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। पहला नियम है स्वच्छता बनाए रखें, भोजन बनाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोएं, रसोई घर और बर्तनों को साफ रखें। दूसरा नियम है कच्चे और पके भोजन को अलग रखें, कच्ची सब्जियों, मांस या मछली को पके हुए भोजन से अलग रखें ताकि संक्रमण न फैले। तीसरा नियम है भोजन को अच्छी तरह पकाएं, अधपका भोजन कई बार बीमारी का कारण बन सकता है। चौथा नियम है भोजन सही तापमान पर रखें और पांचवा नियम है सुरक्षित पानी और ताजी सामग्री का उपयोग करें। दोस्तों, शहर और गांव में भी खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे खुले में बिकने वाला भोजन, कटे हुए फल, एक्सपायरी डेट वाले उत्पाद, बिना ढके खाद्य पदार्थ, इनसे बचना चाहिए। खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकिंग पर निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि अवश्य जांच लें। दोस्तों, आपको हम सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी। एक परिवार रोजाना बाजार से खाने पीने की चीजें लाता था, लेकिन कभी उनकी गुणवत्ता नहीं।

देखता था। एक दिन परिवार के कई सदस्य बीमार पड़ गए। जांच में पता चला कि खराब गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ इसका कारण था। उस घटना के बाद उन्होंने हर खाद्य पदार्थ की जांच शुरू की, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा और परिवार भी स्वस्थ रहने लगा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। खाद्य सुरक्षा में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से तेजी से जानकारी प्राप्त करती है। यदि युवा वर्ग स्वच्छ भोजन अपनाएं, दूसरों को जागरूक करें, खाद्य अपव्यय कम करें और स्वस्थ खान पान को बढ़ावा दें, तो समाज में बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। बातें तो हमारी होती रहेंगी, फिलहाल आइए मिलकर सुनते हैं एक गाना।

दोस्तों, भोजन की सुरक्षा जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है भोजन का सम्मान करना। हर वर्ष बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद हो जाता है जबकि अनेक लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। इसलिए जरूरत के अनुसार भोजन लें, बचा हुआ भोजन सही तरीके से सुरक्षित रखें और संभव हो सके तो जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। दोस्तों, याद रखिए, जब भी खाद्य सामग्री खरीदें उसकी गुणवत्ता देखें, भोजन बनाते समय साफ सफाई का ख्याल रखें, साफ हाथों से भोजन बनाएं और खाएं, बच्चों को स्वच्छ भोजन की आदत सिखाएं, एक्सपायरी डेट अवश्य जांचें और खुले और संदिग्ध खाद्य पदार्थ से बचें। दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें यह संदेश देता है कि सुरक्षित भोजन केवल एक विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का अधिकार है। आइए हम सभी संकल्प लें, स्वच्छ भोजन अपनाएंगे, खाद्य सुरक्षा का संदेश घर घर पहुंचाएंगे और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ मिलकर आनंद उठाएं इस गीत का।

दोस्तों कुछ बातें खेल जगत की। सुर्खियों में जो समाचार है, आज 15 साल के वैभव से चमकी भारतीय टीम। महज 15 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और निडर अंदाज के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय टीम का टिकट हासिल किया। एशियन गेम्स के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाली T20 सीरीज के लिए चुने गए वैभव अब भारत की ओर से टीम में जगह पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने महज 15 वर्ष और 71 दिन की उम्र में राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है। अगर वैभव को अंतिम एकादश में जगह मिलती है तो वह क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के 37 वर्ष पुराने भारतीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। सचिन ने 16 वर्ष 205 दिन में पाकिस्तान के विरुद्ध 1989 में पदार्पण किया था। वैभव ने इस साल आईपीएल में 16 मैचों में 237.30 के स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 776 रन बनाए थे। इसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। मुख्य

चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भी माना कि वैभव के प्रदर्शन ने सबको उन्हें टीम में शामिल करने को मजबूर कर दिया। बड़े बड़े गेंदबाजों के विरुद्ध आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई यादगार पारियां खेली। उनके बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, तेज रन बनाने की क्षमता और दबाव में खेलने का जज्बा साफ दिखाई दिया, जिसके चलते उन्हें राष्ट्रीय टीम में मौका मिला। टीम प्रबंधन उन्हें भविष्य के बड़े खिलाड़ी के रूप में देख रहा है। वैभव के चयन से भारतीय क्रिकेट को एक और उभरता सितारा मिल गया। क्रिकेट प्रेमियों की नजर अब इस युवा बल्लेबाज पर टिकी होगी कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने प्रदर्शन से कितना प्रभाव छोड़ पाता है। साथ ही आपको हम बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को T20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है। अय्यर विश्व कप विजेता कप्तान सूर्य कुमार यादव की जगह टीम में कमान संभालेंगे। और इतनी बातों के बाद आइए अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में, सुनते हैं एक गाना।

दोस्तों, अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में एक बार फिर झारखंड के आशीष तानीपुरति ने अपनी शानदार हैट्रिक करते हुए भारत को चैंपियन बना दिया। जापान के काकामीगहारा में शनिवार को खेले गए फाइनल मैच में भारत ने मेजबान जापान को 4-3 से हराया। फाइनल में आशीष ने हैट्रिक लगाई। उन्होंने तीनों गोल पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए किया। उनके शानदार खेल के लिए उन्हें लगातार तीसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक दिन पहले आशीष ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक गोल दागा था। पूल स्टेज में चीनी ताइपे के खिलाफ भी आशीष ने हैट्रिक लगाई थी। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 13 गोल किए और प्रतियोगिता के टॉप स्कोरर बने। और उधर भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोरिया को 3-0 से पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया। शनिवार को तीसरे चौथे स्थान के लिए खेले गए इस मुकाबले के दूसरे मिनट में झारखंड की संदीपा कुमारी ने फील्ड गोल कर भारत को बढ़त दिलाई। 16वें मिनट में कप्तान स्वीटी कुजूर ने दूसरा गोल किया और 33वें मिनट में टूर्नामेंट के सर्वाधिक 12 गोल करने वाली नौशीन नाज ने भारत की ओर से एक और गोल दाग कर स्कोर 3-0 कर दिया, जो निर्णायक साबित हुआ। झारखंड की संदीपा को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। और खुशी की बात यह है कि इस प्रतियोगिता में झारखंड की 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। खेल जगत की इन बातों के बाद आइए सुनते हैं एक गाना। बातें हमारी जारी रहेंगी इस गीत के बाद।

दोस्तों, जिंदगी की इस दौड़ में भागम भाग है। सभी को तेजी से आगे बढ़ना है, सभी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी है। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहे जितनी तेज दौड़ लगाएं, परंतु वाहन चलाते समय तेज रफ्तार से नहीं चलें। चार पहिया वाहन जब भी चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। याद रखें, कोई भी नियम हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और हमें इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जब भी बाइक चलाएं, दोपहिया वाहन चलाएं, हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। न सिर्फ वाहन चलाते समय बल्कि आपके पीछे जो सीट पर बैठे हैं उन्हें भी हेलमेट लगाना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन हम सभी को करना चाहिए। वाहन के पार्किंग का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ओवरटेक करने से बचना चाहिए। अपनी लेन के अनुसार ही वाहन चलाना चाहिए। लगातार हॉर्न बजाना सही नहीं होता, जरूरत के हिसाब से हॉर्न बजाएं। हाथ सिग्नल का उपयोग जरूर करें और वाहन की गति सामान्य रखें। दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी का दायित्व है कि हम सभी यातायात नियमों से भली भांति परिचित हों और इसका पालन करें। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से हम हर दिन सड़क दुर्घटना में लोगों के हताहत होने की खबरें सुनते हैं। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से न सिर्फ आप अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, अपितु दूसरे का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। यातायात नियमों के उल्लंघन से सड़क दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही ट्रैफिक जाम होने से समय की अनावश्यक बर्बादी भी होती है। दोस्तों, यातायात नियम के पालन से प्रतिदिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है। साथ ही यातायात नियमों के पालन से न सिर्फ यातायात सुचारू रूप से संचालित होता है, अपितु नागरिक अनावश्यक ट्रैफिक के जाम से भी मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वाहन चालक को अपने वाहन को वाहन पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर ही पार्क करना चाहिए। इससे न सिर्फ आपका वाहन सुरक्षित रहेगा, अपितु अन्य वाहन चालकों और राहगीरों को भी

असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यहां वहां बिना पार्किंग के कारण खड़े किए गए वाहनों से जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। ऐसे में जाम से निजात के लिए निर्धारित पार्किंग में वाहन लगाना आवश्यक है। दोस्तों, हमें हमेशा अपने निर्धारित लेन में ही वाहन चलाना चाहिए। ऐसा करने से ट्रैफिक का संचालन आसानी से होता है। वहीं शॉर्टकट या जल्दीबाजी के चक्कर में आप अगर अपनी लेन बदलते हैं तो न सिर्फ इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है अपितु दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, सड़क पर अक्सर हम दूसरे वाहन को जल्दीबाजी के चक्कर में ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से दुर्घटना होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अधिकतर दोपहिया वाहनों की दुर्घटना का कारण अनावश्यक ओवरटेक करना ही है। ऐसे में ओवरटेक से दूरी बनाए रखना ही बेहतर विकल्प है। ओवरटेक हमेशा दाईं ओर से एवं ड्राइवर द्वारा ओवरटेक करने के संकेत देने के पश्चात ही करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, एक बात और, वाहन की गति हमेशा निर्धारित सीमा में ही रखें और ओवर स्पीड से बचें। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि घर पर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं और आइए मिलकर आनंद उठाते हैं इस गीत का।

दोस्तों, हर दिन का अपना एक इतिहास होता है। 7 जून का इतिहास क्या है, आइए हम जानते हैं। 7 जून 1539 बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। 1557 में इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1631 में आज ही के दिन मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज बेगम का निधन हुआ था। 1780 में लंदन में एंटी कैथोलिक दंगे में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई थी। 1893 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। 1974 में टेनिस के खेल में भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले महेश भूपति का जन्म हुआ। 1975 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में बदला गया और कमल के फूल को इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया। 1979 में भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर प्रथम सोवियत संघ के बियर्स लेक से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। 7 जून को जन्मे प्रमुख व्यक्ति हैं सुमित अंतिल, 1998 में जन्म हुआ। 1974 में महेश भूपति का जन्म हुआ। 1914 में आज के दिन ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हुआ और 1909 में वर्जनीय एपकर का। 7 जून को हुए निधन में नटराज रामकृष्णन 2011 में, 2002 में बीडी जत्ती और 1954 में एलन ट्यूरिंग का निधन हुआ। दोस्तों, कार्यक्रम का वक्त हो चला है, हम फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारी और मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त माधवी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। चलते चलते सुनते चले ये गीत।

0: पिटारा में आज
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, इस अंक में आज हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश आपके लिए लेकर आए हैं। आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुई इस विविध लोकरंगी संध्या में प्रतिभागी कलाकार थे डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, ममता वर्मा और नरोत्तम बेन। सहभागी कलाकार थे तबला पर शशांक नीलेश प्रभु, हारमोनियम पर सिद्धार्थ मेस्ता, ढोलक पर सुधीर जंगम और सहवाद्य पर थे जयंत पात्रिकर। इस विविध रंगी लोक संगीत संध्या में नगर सेवक शिवा शेट्टी, निदेशक अभियांत्रिकी राजेश बेलदार, सहायक कार्यक्रम निदेशक डॉ संतोष जाधव, विविध भारती के अधिकारी व कर्मचारी और जाने माने साहित्यकार कलाकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया ममता सिंह और यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुए लोकरंग कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपनी स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूरे करने की ओर अग्रसर है और इस मौके पर विविध भारती के सृजन भारती के अंतर्गत हमने लोक रंग का आयोजन किया है। लोक रंग के जरिए आप ये देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों का जो संगीत है उसके भीतर एक अंतरधारा है जो हम सबको आपस में जोड़ती है और जो ये दिखाती है कि भारत विविधता में एकता का देश है। तो आज के इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं और देश के अलग अलग राज्यों के लोक संगीत की बेमिसाल प्रस्तुति के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। ये सृजन भारती का लोक रंग क्या कार्यक्रम है, इसका परिचय देने के लिए मैं विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर संतोष जाधव को आमंत्रित कर रहा हूँ।
2: नमस्कार, आज के इस महफिल में सारे कलाकार और उपस्थित सभी संगीत प्रेमी, रेडियो प्रेमी, विविध भारती प्रेमी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी भारत की गौरवशाली प्रसारण परंपरा की एक प्रतीक है। आकाशवाणी ने अपनी 90 बरस की प्रेरणादायी अविस्मरणीय यात्रा पूर्ण की है। इस 90 बरस में आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। इस गौरवशाली स्मरणोत्सव के अंतर्गत विविध भारती द्वारा इस लोक रंग महफिल का आयोजन किया गया है। इस महफिल में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ की लोक संस्कृति, लोकगीत और लोक धुनों में हमारी मिट्टी की खुशबू है। सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं सभी कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस मंच पर उपस्थित कलाकार अपनी मधुर प्रस्तुतियों से लोक संगीत पेश करेंगे। तो आइए लोक रंग की इस सुरमय शाम में हम शामिल होते हैं। आकाशवाणी के 90 बरस की एक गौरवशाली यात्रा को नमन करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा, भारत की जितने लोगों तक पहुँचता है पानी, भारत के जितने लोगों तक पहुंचता है पानी, उनसे भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है आकाशवाणी। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष यादव। और अब अतिथियों के स्वागत की बारी है। आज के इस कार्यक्रम में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग पुष्प गुच्छ के जरिए स्वागत नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पौधा भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फूल तो मुरझा जाते हैं पर पौधा कायम रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो कलाकार मौजूद हैं एक एक करके

0: उनका जल्दी से परिचय देता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव माननीय राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं। बीते बरस वे पोर्ट ऑफ स्पेन, नेल्सन आइलैंड और सेंट लूसिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा माटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। विभा रानी हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार हैं। 20 से ज्यादा किताबें उनकी आ चुकी हैं, जिनमें कहानी संग्रह, नाटक, उपन्यास और लोक कथा संग्रह शामिल हैं। वे एक सक्रिय थिएटर और फिल्म कलाकार हैं। लाडली मीडिया सम्मान और नेमी चंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से सम्मानित की जा चुकी हैं। मोहन राकेश सम्मान, इंडियन ऑयल वीमेन अचीवर सम्मान उन्हें मिल चुका है। लाल कप्तान, शमशेरा, महारानी, माँ जैसी फिल्में और वेब सीरीज उन्होंने की हैं। उनकी मशहूर किताबें हैं मधुबन की मुनिया, प्रेग्नेंट फादर, दूसरा आदमी, पीर पराई, आवतनिक प्रेम करें, अगले जन्म मोहे, बिटिया ना कीजो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेडियो से शुरू किया था। प्राध्यापक प्रशांत मोरे एक बहुत मशहूर लोक कवि हैं। कथा, तिच्चा, लग्नाची और स्पर्श जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, गाए हैं और स्वरबद्ध किए हैं। हिंदी, उर्दू, मराठी मुशायरे में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व प्रशांत जी ने किया है। आईचा कविता नाम की उनकी प्रस्तुति के भारत भर में 5600 शो हो चुके हैं, कमाल का रिकॉर्ड। नामदेव ढसाल पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार हैं। उनकी कृतियां हैं वेदना सातारकर, कबीरांची दीन, माए अर्थात आईची कविता, खंड एक और खंड दो, अभिवादन बा भीम। नरोत्तम बेन विगत 33 वर्षों से सतत रंगकर्म कर रहे हैं। जबलपुर से रंगकर्म की शुरुआत की थी और इस वक्त मुंबई में भी रंगकर्म जारी है। एक नाटक की रिहर्सल से सीधे इस मंच पर पदार्पण किया है उन्होंने। अभिनय कार्यशालाओं का संचालन करते हैं। कई नाटकों का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा महेश्वर में सन 1994 में आयोजित अभिनय कार्यशाला में अभिनेता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कई विज्ञापनों, धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय किया है और बुंदेली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। नरोत्तम बेन यहां बुंदेली लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। ममता वर्मा बागेश्वर उत्तराखंड में पैदा हुई, 2021 से मुंबई आई हैं और कई सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने प्रस्तुति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज पहली बार विविध भारती के लिए वो मंच पर गीत प्रस्तुतियां करने वाली हैं। तो ममता का बहुत हौसला बढ़ाने की जरूरत है। ये हमारे कलाकार हैं और इसके अलावा बहुत ही काबिल कलाकार हारमोनियम, तबला और ढोलक पर मौजूद हैं और इसके अलावा डफ और घुंघरू जैसे सहायक वाद्यों पर मेरे अपने साथी विविध भारती के मशहूर उद्घोषक जयंत पात्रीकर साथ देंगे। तो ये हमारा जमावड़ा है और इस कार्यक्रम का संचालन ममता सिंह करेंगी। तो आइए ममता सिंह, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
1: सभी अतिथियों को नमस्कार और सभी का स्वागत। आज की जो संध्या समर्पित है हमारी मिट्टी की उस मीठी खुशबू को, जो लोकगीतों की स्वर लहरियों में बसती है। लोकगीत यानी हमारी परंपराओं की धड़कन, हमारे गांव की मुस्कान, माँ की लोरी, खेतों की गूंज, त्योहारों की रौनक और रिश्तों की मिठास। जब लोकगीत गूंजते हैं तो सिर्फ सुर नहीं बजते। तो चलिए फिर इस रंगारंग संध्या में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं उन सुरों का जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ते आए हैं। लोकगीत में पूरी परंपरा है, पूरी संस्कृति है, रिश्ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विदुषी शैलेश श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में। जरा जोरदार तालियों से स्वागत। वैसे तो देश के सभी राज्य में लोकगीत की अलग परंपरा है, अलग छटा है, अलग रंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोकगीत एक खास रंग लिए होता है, क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की परंपरा रही। विवाह गीत जब गाते हैं तो उससे पहले देवी गीत गाते हैं। तो माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं।
2: आप सभी के हमारे प्रणाम स्वीकार करें। अपने माटी की सेवा खातिर यहाँ बुलावल गई है आज। मुझे विविध भारती ने याद किया है अपनी लोक रंग सृजन भारती की श्रृंखला में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आकाशवाणी की अहम भूमिका है मुझे गढ़ने में। हर समय मुझे आकाशवाणी ने एक सर्वोत्तम मंच दिया और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। तो सरस्वती का हम लोग यहाँ भोग में सुरस्वती कहीं ले जाए, तब सुनावत है आप सबके
1: सरस्वती मैया की जय।
2: हाँ

0: क्या बात है।
1: जाने माने सभी जीव उपस्थित गण हैं, सबका मैं मंच से स्वागत करती हूँ। बहुत आभारी हूँ विविध भारती की।
0: शुक्रिया शैलेश जी। अभी यहाँ पर लोकगीतों की जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध है।
1: देखिए विविध भारती आपका 90 वर्ष,
0: तो उस पर कुछ गा रही।
1: हाँ सुनाई गाती हूँ इतना।

0: गाड़ी की यात्रा तो बड़ी मजेदार रहल है। शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब लोक संगीत की जो छटा है, उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र की संस्कृति की ओर ले चलेंगे। हम महाराष्ट्र के लोक रंग की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र खानदेश अपनी सरलता, लोक भाषा और लोक संगीत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां के लोकगीतों में खेत है, खलिहान है, पूरी संस्कृति है, परंपरा है। बाकी मैं नहीं बोलती हूँ, प्रशांत मोरे जी जो प्राध्यापक भी हैं और संगीत के बहुत जानकार हैं, संगीतकार भी हैं। तो प्रशांत मोरे जी आपको माइक दे रहे हैं, जरा महाराष्ट्र के लोक रंग के बारे में बताइए और सुनाइए, कुछ प्रस्तुति दीजिए।
1: सर्वांना नमस्कार। भाषा कळते ना, जरी भाषा कळली नाही तरी भावना कळेल, आणि भावना ह्या सगळ्याच ठिकाणी भाषा बदलतात पण भावना बदलत नाही।
0: बिलकुल
1: है क्या नाही, भाषा बदलते भावना बदलत नाही। भावना काय असते, भावना तीच असते। सैमा

0: बहुत बहुत आभार प्रशांत जी, बहुत सुंदर गाया और ऐसे लग रहा था कि भले इसमें समझ में आता है कि भाषा बोली कोई भी हो, लेकिन संगीत में इतनी ताकत है कि आपको मोहित कर लेती है और झूमने पर मजबूर कर देती है। अब हम नाट्यकर्मी और गायिका और अभिनेत्री विभा रानी जी को बुला रहे हैं मंच पर। बिहार के लोकगीतों की छटा हम देखेंगे और बिहार का लोक संगीत भी बहुत समृद्ध है, वहाँ के मैथिली लोकगीत आप सुनते ही होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह की प्रस्तुति विभा रानी देंगी। खासतौर से एक गायन का प्रकार है झिझिया, झिझिया के बारे में बताइए विभाजी क्या होता है और फिर वो गायन का प्रकार भी प्रस्तुत कीजिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाए।
1: बिहार के उत्तरी भाग मिथिला सची मैथिली भाषा है, सृजन भारती सब कार्यक्रम में ऐठा हमरा आमंत्रित कैल गेले। हम विविध भारती के बहुत बहुत आभारी छी। हमर करियर के शुरुआत आकाशवाणी से भेल है, तो बुझाइए जे आकाशवाणी हमरा लेल नैहर माने मायका अछि। अभी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, संकट है। एक तरफ भोजपुरी की जोरदार आवाज, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का रण झुंझार शिशाई। अब उसके बीच में मैथिली बड़ी मीठी मीठी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है कि लोग कहते हैं कि उसमें मैथिली में लड़ते भी हैं तो लोगों को लगता है कि प्रेम ही करते हैं।
0: क्या बात है।
1: एक बार एक कवि सम्मेलन में एक भोजपुरी के कवि और मैथिली के कवि भी बैठे हुए थे। भोजपुरी के कवि पूरी वीर रस की कविताएं सुना गए, उसके बाद मैथिली के एक कवि आए, उन्होंने प्रेम रस की कविता सुनाई, तो भोजपुरी के कवियों को भी चढ़ा कि मैं भी प्रेम कविता सुनाऊंगा, तो वो उठे और कहा हम प्रेम करब, हम प्रेम करब। तो हरिमोहन झा जी जो मैथिली के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, वो बोले वहीं से बैठे बैठे हम माहुर लौ कर मर रहब, मतलब मैं जहर खा करके मर जाऊंगा अगर ऐसा प्रेम होगा तो। तो ऐसी मीठी और ऐसी छोटी छोटी इस तरह की भाषा है मैथिली, तो आपको दोनों के बीच में जरा संतुलन बना करके चलना होगा। ममता, आपने कहा कि झिझिया, शैलेश ने अभी सुनाया था देवी गीत सरस्वती वंदना। झिझिया दशहरे के समय में गाया जाने वाला, नृत्य किया जाने वाला एक लोक नृत्य है और उसमें देवी की आराधना की जाती है, दुर्गा की आराधना की जाती है और भगवती की आराधना की जाती है। भगवती के भाई हैं भैरव, ब्रह्म उनके बोलते हैं, उनकी आराधना की जाती है

0: लोकगीतों में कहानी किस्से होते हैं, मनुहार होता है, नोकझोंक होती है, तकरार होती है, तो एक जाट और जटिन जब बात करते हैं तो उस बातचीत को लोकगीत में कैसे पिरोया जाता है, जरा बताइए विभाजी।
1: जट जटिन मिथिला का एक खेल है, ये भी एक नृत्य है और जिसे बारिश के समय में खेला जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उस सूखे के कारण कहीं बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूख रही थी फसल, तो जट वो चला विदेश कि हम तो परदेश जा रहे हैं। जटिन उसकी पत्नी उसको वो कह के गया कि जैसे ही तुम्हें आकाश में मेघ दिखे तुम मुझे आवाज़ देना और मैं वहाँ से आऊँगा। 12 बरस हो गए, इस बीच बारिश नहीं हुई, जट परदेश में था, कमाता रहा, जटिन के संदेश का इंतज़ार करता रहा। जटिन भी अकेली थी, वो अपने मायके चली गई। 12 साल के बाद उसने देखा कि आकाश में काले काले मेघ आए हैं, तो उसने वहीं से आवाज़ दी, ए जटिन

जट्टा को आवाज सुनाई, उसने वहीं से कहा, एलियोगे जट्टिन एलियो, एलियोगे जट्टिन एलियो, आयब गेलियोगे जट्टिन आयब गेलियो। और जट्टा आ गया, जटिन भी मायके से आ गए। अब जब 12 साल के बाद पति पत्नी मिले हैं तो थोड़ा सा मान मनोबल तो होगा ना। तो जटिन कहती है, तुमसे मैंने जब जब टीका मंगवाया, गहने मंगवाए, तुम कभी भी जो है ले करके नहीं आए। मेरी बाली उम्र जो है, क्योंकि बचपन में तब शादी हो जाती थी, वो बर्बाद हो गई। तो जटा भी कहता है, मैंने जब तुमको दिया तो तुम तो मायके में जाके बैठी थी, नैहर में जाके बैठी थी, तो कैसे पहनोगी। तो ये इस जट जटिन की कथा और उसके बीच ये गीत है।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है विभा दी, बहुत अच्छा आपने गाया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार विभा जी, और बहुत कम समय में बहुत सारी प्रस्तुतियां दी, शुक्रिया आपका।
1: बहुत देर से हम सुन रहे थे आप लोगों की, अब हम लोगों के गाने गावे की बारी है। नानू भैया बहुत ही हो गई, चलो आ जाओ अब अपनी बुंदेली को झंडा फहरावे। बुंदेलखंड की खासियत ये है कि वहां अगर आप किसी का नाम पूछें, कहे भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब आएगा तुम्हें क्या करने, मतलब नाम बताने से पहले व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि तुम्हें करना क्या है, नाम से क्या करना है। लेकिन बुंदेलखंड में बहुत प्रेम है, नरोत्तम बेन बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। तो भैया नानू भैया इसी के साथ शुरू करो आज की महफिल, फिर तुम्हारी मर्जी जो तुम गावे चाहो।
2: प्रणाम पहले सभी जनन को, नरमदे हर, जय महाराष्ट्र जय भारत।
3: ये बम्बुलिया और एक लमटेरा, ये बहुत ही अद्भुत चीज है बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड का सबसे फेमस फॉर्म है राई। बुंदेलखंड के फोक की आप बात करेंगे तो राई के बिना मामला

पूरा होता है। ऐसा ये है बंगुलिया और लंपेरा। लंपेरा यानी लंबी टेर, लंबी टेर, लंबी आवाज। तो बहुत अच्छे जानकारी लोगों के से हमें इनके बारे में मिली कि पहले क्या होता था कि लोग गांवों में रहते थे, गांवों से जाते थे, खेत के रास्ते से गुजरते थे, मेला देखने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो एक साथ निकला करते थे वो लोग। और एक बंदा कहीं बहुत दूर है, बहुत दूर है बैलगाड़ी में, उसने वहां से कुछ एक लाइन बोल दी, कुछ एक लाइन उसने गा दिया, फिर पीछे का कोई भी बंदा है जिसने सुना बैलगाड़ी पर चला रहा है तो उसकी एक लाइन सुनकर जो है उसका जवाब दिया करता था। फिर किसी और छोर पे कोई दूसरा बंदा होता था, उसने सुना, उसको जवाब सूझा तो ऐसा फिर वो गाता था, तो उसको लंपटेरा कहते थे। इसी से मिला हुआ है बंबुलिया, वो भी लंबी लंपटेरा का ही एक रूप है। उसमें देवी महिमा, खासकर नर्मदा जी, इन सबका जो जिक्र होता है उसके लिए मामला है। भाई चंग पैटर्न पे आप चलते चलिएगा।

0: थैंक यू.
1: वाह वाह क्या बात है.
0: धन्यवाद धन्यवाद
1: नरोत्तम जी, बहुत बढ़िया आप गा रहे हैं. अगर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा गाया. और जोरदार तालियां नानू जी के लिए, जोरदार तालियां, क्योंकि ये जो पूरी कहानी मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड की कहानी थी इनके गाने में. बहुत बहुत शुक्रिया. अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर. आमंत्रित कर रहे हैं ममता वर्मा को, जो वैसे पहाड़ों पर हम जब सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है. बर्फ़ की बारिश में भीगना बड़ा सुखद लगता है, लेकिन वहाँ का जीवन कितना कठिन है ये हम में से शायद ही कोई सोचता है. लेकिन पहाड़ों का लोकगीत बहुत ही सुंदर है, बड़ी मिठास है. भले ही आपको समझने में कठिनाई हो, लेकिन मीठी आवाज़ में ममता वर्मा बहुत बढ़िया गाती हैं. तो ममता से हम उनसे कुछ पहाड़ों के बारे में कुछ जानकारी भी चाहते हैं. ममता, हम आप गाएं इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं. हमने सुना है कि उत्तराखंड जहाँ के आप रहने वाली हैं, वहाँ का जीवन काफ़ी कठिन है और कमाई का जरिया बहुत कम है. तो वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो कमाने के लिए शहरों

0: और चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं। महिलाएं अपना जीवन यापन खुद करती हैं, खेती किसानी से लेकर जो भी काम होता करती हैं और बड़ी निडर होती हैं। तो हम ममता से पूछते हैं वहाँ के जीवन के बारे में, बताइए कि जब पुरुष घर में नहीं होते तो डर नहीं लगता है वहाँ के जो?
1: नहीं, वहाँ की महिलाएं जो होती हैं बहुत निडर महिलाएं होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, कभी कभी भालू और बाघ से भी वो लड़ जाती हैं। नमस्कार, प्रणाम, पहलाद। मैं ममता वर्मा उत्तराखंड कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ। मैं आपके सामने जो गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उस गाने में ही एक लड़की और एक औरत का दुख पीड़ा जो होता है वो उस गाने में व्याख्यान किया है। ये प्रहलाद मेहरा जी ने ये गाना गाया है, एक लड़की के दुख और उसके पीड़ा, वो जो घर में काम करती है वो उस काम का व्याख्यान इस गाने में किया है।
0: तो वो गा के सुनाइए।

वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक हमने सुना है दर्शकों की ओर से फरमाइश भी आई है कि एक गाने पर आप नृत्य भी करती हैं, और वो नृत्य भी थोड़ा सा अगर आप चार लाइन भी गाते हुए सुना सकती हैं तो सुनाइए। और आपकी जो पोशाक है, वेशभूषा है, हम अपने दर्शकों को और अपने रेडियो के श्रोताओं को बता दें कि ममता वर्मा ने जो पोशाक पहनी है, बाकायदा उत्तराखंड की एक जो महिला होती है वहाँ की पोशाक पहन रखी है, जो बहुत खूबसूरत लग रही है।

0: वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति और नृत्य के साथ गाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पूरे सुर में, सुर के साथ और भाव के साथ आपने प्रस्तुत किया। ममता वर्मा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये थी लोक संगीत संध्या की विविध रंगी प्रस्तुति। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों ने और वहां उपस्थित दर्शकों ने मंच पर जैसे धमाल मचा दी, और इसके बाद वरिष्ठ उद्घोषक जयंत पात्रिकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
0: आखिर में दो लाइन, चलत मुसाफिर मोह लियो रे, इस गाने पे सारे दर्शक खड़े होके नृत्य करेंगे और यहाँ पर मंच पर सारे कलाकार हम सब उसमें शामिल रहेंगे।
2: उड़ उड़ बैठी पनवनिया दो कनिया, पनवा कैसा बरस ले लियो रे।

0: कन्हैया उड़ उड़ बैठी बजा जिया तो कन्हैया है उड़नी के सब बरस ले पिंजड़े वाली मुनिया है उड़नी के सब बरस ले लियो रे पिंजड़े वाली मुनिया।
1: थैंक यू विविध भारती।
2: धन्यवाद।
1: मुंह से रिदम जिन्होंने बजाया मुझे तौफीक भाई की याद आ गई। एक जोरदार तालियां।
3: शैली जी, एक कमाल की बात यह है कि साज नहीं थे, लेकिन इस बीच में ये नानू और जयंत जी ने जिस तरह से बीट बॉक्सिंग की है वो बहुत कमाल का था, बहुत ही गजब।
2: विविध भारती की ओर से आयोजित सृजन भारती के इस लोकरंग कार्यक्रम में आज की इस शानदार प्रस्तुति के लिए विविध भारती परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। इस विविध रंगी शाम में शामिल होकर और उसमें नए रंग भरने के लिए, इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए दिल से आप सभी का विविध भारती परिवार आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं हमारे नगर सेवक शिवा शेट्टी जी के प्रति, हरीश छेड़ा साहब अध्यक्ष बोरीवली सांस्कृतिक केंद्र, ये ऑडिटोरियम हमें उपलब्ध करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार राजेश बेलदार जी साहब, हमारे निदेशक अभियांत्रिकी विविध भारती के, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताड़े साहब और सभी इंजीनियरिंग के साथियों का, विशेषकर मंगेश सांगड़े जी और विनायक रेणके जी, सक्रिय सहयोग देने के लिए हम उनके आभारी हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं साउंड सिस्टम के लिए डीजे जस्सी और उनकी टीम का आभार, और हमारे आज के कलाकारों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, ममता वर्मा, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नेहा जी और नरोत्तम बेन जी, आप सभी का इस लोकरंगी कार्यक्रम में आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार। संगत करने वाले सभी साथी सिद्धार्थ मेस्ता, सुधीर जंगम साहब और बाकी साथी थे, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का एक बार फिर से हम अमूल्य वक्त देने के लिए और बहुमूल्य वक्त देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले, और अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
5: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
3: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
3: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
3: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
4: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते कुछ जरूरी संदेश।
5: बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
6: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
7: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
6: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
7: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: अभी आप सुन रहे थे कुछ

0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया स्वीकार।

कार कीजिए मेरा नमस्कार और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं इस गीत के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है आंधी, गुलजार के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अब आपको सुनवाते हैं ब्लैक मेल फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर ने इसे गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं सुहाना सफर, इस फिल्म का गीत आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर, और इस गीत को गा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत। गीता दत्त ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

ये गीत सुना आपने अभी गीता दत्त की आवाज में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजें हैं, युगल स्वर हैं। मर्जू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत, शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, कन्यादान फिल्म से ये गीत है।

0: प्रेम कहानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: सुनो सुनो

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आजी बर्मन ने संगीत बद किया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम बस कुछ ही

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ आपके सुरीले सफर की हमराही बनेगी आपकी ये साथी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, आज की इबारत तो आपने पढ़ ही ली है ना? जी हाँ, मैंने कहा था कि जरा प्यार से पढ़िएगा। प्यार से पढ़ा ना आपने, मुझे यकीन है कि बहुत उलझाया नहीं होगा आज की इबारत ने आपको, क्योंकि बहुत ही सामान्य शब्दों से सरल भाषा में कविता के रूप में ये इबारत हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए तैयार की है। हाँ तो हम सफर पर जा रहे हैं ना, तो उलझन में क्यों फंसाना? प्यार से लिखा है और प्यार से पढ़ा है, तो प्यार से ही इस सफर को तय भी तो करेंगे हम और आप मिलकर साथ में। तो तैयार है ना आप सभी मेरे साथ आज की इस सफर पर जाने को? हाँ, मैं पहली बार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखातिब होने जा रही हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम सुरीला सफर में। हमारे सभी प्रिय श्रोताओं ने मुझे आज पहली बार सुरीला सफर शुरू करने की बहुत शुभकामनाएं बड़े प्यार से बड़े सम्मान के साथ दी है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को इसके लिए धन्यवाद अर्पित करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे भी अपना साथी स्वीकारने के लिए।

कुछ साथियों ने तो मुझे पायलट घोषित किया है। जी हाँ, क्योंकि हम सुरीला सफर लेकर जो चलने वाले हैं ना, इस सफर की पायलट उन्होंने मुझे बना दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस तरीके से इस नाम से नवाजा है। और देखिए कुछ श्रोता मुझे किस तरह से आज मेरा स्वागत करते हुए हमें संदेश भेज रहे हैं कि देश की सुरीली धड़कन पर पहली बार जब नए उद्घोषक की जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये पूजा जी तो नहीं। देखिए उन्होंने मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सुरीला सफर लेकर आ रही हैं तो स्वागत। और विविध भारती का प्रसारण हवा के संग संग जब होता है तब खुशियां ही खुशियां दामन में समा जाती है। जिया बेकरार होने के साथ बहार छा जाती है। भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं, बाग की हर कली खिलने लगती है, तब ये गीत गूंज उठते हैं। कुछ गीतों के बारे में उन्होंने कहा, जैसे कि इन हवाओं में इन फिजाओं में आजा आजा रे तुझको विविध भारती का प्यार पुकारे। क्या बात है।

तो श्रोताओं, सबसे पहले आपके लिए हम इबारत भी तो पढ़कर सुना देते हैं, है ना? क्योंकि हाँ, आपने तो पढ़ ली है, पर फिर भी हम आपको पढ़कर जरूर सुनाएंगे। कुछ श्रोता जो कुछ देरी से जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी, है ना? तो पढ़ देते हैं आपके लिए हम आज की इबारत। प्यार की गली में जब से तेरी आहट उतरी है, हवा भी गीत गुनगुनाए, पानी भी कहानी सुनाए, आंख चुराए फिरती हूं मैं सबसे तेरे नाम पर। आंचल में भर ली है मैंने खुशियां इस संसार की, कलियां खिला दी तूने मेरे गोरे अंग में, जियरा ने तेरी यादों में कैसी सांवरी महफिल सजाई है। दो मन थे जो दूर दूर तक अपनी राहों में भटके, आज मोहब्बत ने दोनों की एक डोर बंधाई है। आग ओढ़कर पिघले जवानी, चांदनी भी शर्मा जाए, किसी के होठों पर मेरा नाम 100 बार उभरा है। आंखें चार हुई तो जैसे थम गई पुरवैया भी, तकदीर ने चुपके से प्रेम दीपक वारा है। जा रे जा कहकर भी तुझको जाने कब जाने देती हूँ, हर इनकार के पीछे मैंने एक इकरार उतारा है। संगमरमर सा चेहरा तेरा, पानी सा निर्मल मन है, हवा ने तेरी खुशबू को हर सू आकर बिखेरा है। हम जोली छेड़ रहे हो क्यों दिल के कोमल तारों को, इंतजार की लंबी रातों ने सपना सवारा है। सीने के सुर्ख बाग में अब तेरी चाहत खिलती है, हर पंखुड़ी पर तेरे नाम का रंग गहरा है। प्यार की गली से होकर जो तेरे दिल तक पहुंची हूँ, अब मेरी हर धड़कन ने बस तुझको ही पुकारा है।

0: जी हाँ श्रोताओं, ये थी आज की इबारत एक कविता के रूप में, प्यार से ओतप्रोत। हाँ, प्यार से भरी बातें, प्यार से भरी है इबारत। एक स्त्री का मन जब प्यार से भर जाता है तो हवा, पानी और मौसम कैसे उसे सताने लगते हैं, बस हर पल मिलन का इंतजार रहने लगता है। अनछुआ सा प्यार जो सिर्फ नजरों से ही ऐसी चुवन दे जाता है कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, मन बस में नहीं रहता, बदन का तार तार पिघला देता है। वैसे प्यार तो है ही इस इबारत में, पर साथ ही क्या और है जो हमें प्यारा है। जिसके आने का हमें इंतजार है अब बेसब्री से, है ना, जिसके बिना हमारी अगन कम नहीं होने वाली है। आप बताते चलिए, सुरीले सफर का सुरीली शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे सुनकर आपको पता लग ही जाएगा कि मैंने पूछा है कि वो क्या है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि प्यार की गली बहुत सकरी होती है, एक बार व्यक्ति पहुंच तो जाता है लेकिन वापस आना मुश्किल होता है, और कभी वह आ भी गया तो इश्क में डूबी ठंडी हवा उसे पुरानी आहट लिए चुभने लगती है। उनकी प्रेम कहानी आंखों द्वारा
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, विश्व में सबसे सस्ती रसोई गैस पाने वाले देशों में भारत। उज्ज्वला लाभार्थियों को 642 रुपए में मिल रहा सिलेंडर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा आईटी सेल के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन। सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम का बाजार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की सराहना, बताया लोकल टू ग्लोबल का सशक्त

0: उदाहरण, पाकुड़ में जालसाजी को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप, और गुजरात में प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित, रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के लाभार्थी को पहले 4 रिफिल पर सालाना 300 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिलने के बाद 14 किलो 200 ग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिए 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। मंत्रालय ने बताया है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा चुकाई गई प्रभावी कीमत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित पड़ोसी देशों में खाना पकाने की गैस की कीमतों से कम है। आकाशवाणी रांची के समाचार कक्ष से संपादक मीनाक्षी राय के साथ मैं आसिया नाजली।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने और संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, प्रदेश प्रवक्ता तथा आईटी एवं मीडिया सेल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। इससे पहले अपने एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने श्री नवीन बोकारो पहुंचे। भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।
2: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं और मुझे लगता है कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में बहुत ही ऊर्जा का संचार होगा और जिस तरह से उनके कदम पड़ते ही बंगाल विजय हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड में उनके कदम पड़े हैं, हम आने वाले समय में बोकारो विजय भी करेंगे और झारखंड विजय भी करेंगे।
0: रांची से बोकारो जाने के क्रम में रामगढ़ में श्री नवीन ने शहीद निर्मल महतो चौक पर निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल नामांकन की आखिरी तारीख है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब राजनीतिक दलों की नजर आगे की रणनीति और संभावित चुनावी समीकरणों पर टिकी है। झारखंड के सिमडेगा जिले की महिला किसानों के उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम भेजी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस उपलब्धि को वोकल फॉर लोकल से लोकल टू ग्लोबल का एक शानदार और सशक्त उदाहरण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि अपीडा के निरंतर प्रयासों से स्थानीय किसानों को बेहतर मूल्य, महिला किसानों को नई पहचान और भारत के कृषि निर्यात को नई गति मिल रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के

0: परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। पाकुड़ में जिला खनन कार्यालय से निर्गत रिपोर्ट में छेड़छाड़ और जालसाजी किए जाने को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने पत्थर खदानों का लीज हासिल करने के लिए खनन कार्यालय द्वारा निर्गत सन्निहित रिपोर्ट में छेड़छाड़ और जालसाजी कर राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाधान निर्धारण प्राधिकरण रांची से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं खनन पट्टा हासिल करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराए। जामताड़ा जिला में उपायुक्त आलोक कुमार के निर्देश पर वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में जांच टीम ने जिले के चिन्हित पंचायतों में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
1: हमारे सारे वरीय पदाधिकारी हर एक पंचायत में जाकर ग्राउंड लेवल पे जो हमारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है और उसमें उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हम लोग और कैसे कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं ग्राउंड लेवल पे जो हम लोगों को इनपुट मिलेगा उसको हम लोग एज अ डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे, जिससे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो झारखंड सरकार की योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनका हो सके।
0: कोडरमा के झुमरी तिलैया में जूट से उत्पाद तैयार कर न सिर्फ महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि प्लास्टिक मुक्त भारत के संकल्पों को साकार करने में जोर जोर से जुटी हैं। इंदरवा की रहने वाली राधा यादव के साथ तकरीबन 20 महिलाएं महिला सशक्तिकरण के साथ प्लास्टिक मुक्त के संदेशों को साकार करने में जुटी हैं।
2: मेरे साथ 20 महिलाएं हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो 18 से 20 21 साल के हैं। ये सब को हम एक जगह इकट्ठा किए। जब उन लोग के हाथ में पैसा आया तब ये लोग अच्छा लगा कि ये अपना पैसा है। अब सोचते हैं कि ये कुछ धीरे धीरे अगर ये लेडीज भी सीखे और अपना व्यापार कर सके और इससे भी और आगे जाएं।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपये प्रति किलो है। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रांची द्वारा फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और महापौर रोशनी खलको शामिल हुए। सभी अतिथियों ने युवाओं को फिट इंडिया आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। गुजरात में आयोजित प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत और झारखंड का मान बढ़ाया। 78 देशों में 400 से ज्यादा खिलाड़ियों के बीच रोशन ने अपने उत्कृष्ट कौशल, शारीरिक संतुलन और कठिन आसनों से जजों को प्रभावित कर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा विश्व में सबसे सस्ती रसोई गैस पाने वाले देशों में भारत। उज्ज्वला लाभार्थियों को 642 रुपये में मिल रहा सिलेंडर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा आईटी सेल के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन। सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम का बाजार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की सराहना, बताया लोकल टू ग्लोबल का सशक्त उदाहरण। पाकुड़ में जालसाजी को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप। और गुजरात में प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित। रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: इस क्रिया के साथ इस गीत में वाद्य यंत्रों के साथ ताल से ताल मिलाया जा रहा है और कितना खूबसूरत गीत हमें ये मिला है ना।

तो हम आपके संदेशों को साथ ही साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं। जी, उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आहट यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभिक चरण होता है, जहां प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित हो उठते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती हैं कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है, जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट में किसी गीत की धुन में ऐसे बस गई है कि जैसे ही जरा सी हवा लहराती है लगता है कि तुम आए हो, कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है। जब तुम पुकारते हो तुम्हारे दिल की गली तक पहुंचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूँ, मेरी हर धड़कन पर बस तुम्हारा नाम हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर एक बार कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखा जाए तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है, उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन की सबसे गहरे और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है। फिर भी प्यार को आमतौर पर एक गहरी भावना, लगाव और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की काव्यमय इबारत मन को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी और हवा कहीं ना कहीं शामिल है। चलिए अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को सुनकर बताइएगा कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही हैं, जा री जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो गीत सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, वो था फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश साथियों की आवाजों में। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था। और अब ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन से, इस गाने में जो आपको बताना है वो ये प्रश्न है कि ये हसीनाएं किसकी सवारी कर रही हैं।

और श्रोताओं ये भी बताइए कि क्या आप आज के समय में साइकिल का उपयोग करते हैं। साथ ही साझा कीजिए आपके प्यार के लम्हों में साइकिल ने क्या योगदान दिया।

जी श्रोताओं, आपको हेमा मालिनी वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की सवारी कर रही हैं, और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपके प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रही है।

साइकिल उस जमाने में सिर्फ सवारी ही नहीं थी, ये प्यार के लम्हों की साथी भी बनती थी। साइकिल पर प्यार के लम्हों को ज्यादा जिया जा सकता था।

है ना। मोटर बाइक या कार में अगर हम जाते हैं तो इसकी बजाय, क्योंकि क्या होता है कि वक्त इसमें बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, साइकिल पे तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज के जमाने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज्यादा ज्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें, सिवाय शारीरिक ऊर्जा के। हमारे साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसकी जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया, और ये शोर फिल्म का गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए।

एक श्रोता कहते हैं कि पूरी भारत में प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी ही कविता की कुछ लाइनें यहां पर हमें लिखकर भेजी हैं। हाँ, और इसका जवाब भी आ गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानो जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है, क्या बात है। जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना ये नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनवाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

यहाँ भी गीत में बारिश है, पानी है, प्यार का इकरार है। पानी, घटा, हवा सब कैसे प्यार के साथ जुड़ जाते हैं, ये हमें हमारे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से पता चलता।

0: एक स्त्री कैसे खिल उठती है, प्यार ही प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी रे पानी गीत से आगाज होना भी बहुत भाया है। आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफर को, चलिए ले लेते हैं एक संदेश और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री हैं यानी स्त्री जो प्यार

से ओतप्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: करो।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर,
0: हाँ

कई श्रोताओं ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं और वो शामिल है हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत भी प्यार से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती हैं और मन की बातों को उनके साथ सुर में पिरो रही हैं। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतजार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बड़ा चला जाता है। तो हाँ जी, देखिए उसके लिए तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएं।

अगला गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, झुक गया आसमान फिल्म से है। इससे पहले हमने मिलन फिल्म से आपको गीत सुनवाया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा गीत। और अब ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है।

0: जी हाँ, हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हाँ, सायरा बानो जी। प्यार के एहसास से लबरेज वो बातों को याद कर रही हैं प्यार की, और अपनी खुशी जता रही हैं। हमारे कई श्रोता हमें संदेश भेजते जा रहे हैं, उनके कुछ गीत इस इबारत के शब्दों के साथ उन्होंने पहचाने हैं और कुछ नहीं पहचाने हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना उनसे मिली नजर, लता मंगेशकर ने इसे गाया था, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन के संगीत से सजा। अब जो गीत सुनवा रहे हैं उसे आप बताइए कि इसमें जो अभिनेता राजकुमार ने दुपट्टा बांधा है उसका क्या रंग है।
1: मिलो।

जी हाँ, ये ने कहा कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आग चुराए, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझे से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें बता दी है।

सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए, अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर रांझा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके इस फिल्म से। और आप बताइए कि इसमें शर्मिला जी जिन्हें छुपा रही हैं सबसे, वो उनके क्या लगते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में आप ये गीत सुन रहे हैं आनंद बख्शी के बोल एस डी बर्मन का संगीत। हीर रांझा फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसे लिखा था कैफी आजमी ने, मदन मोहन का संगीत था।

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा, आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

भारतीय संस्कृति में भोजन को प्रसाद कहा जाता है, जो जीवन का आधार और ईश्वर का रूप है। अन्न को अन्न देवता और किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। भोजन शुरू करने से पहले अन्नदाता सुखी भव कहकर प्रार्थना की जाती है। वास्तव में ये किसान ही हैं जो नन्हे से बीज को अपनी मेहनत से सींच कर उसे इस योग्य बना देते हैं कि वो लहलहाती गेहूं या धान की बालियों में पककर अनाज के रूप में हम तक पहुंचता है। हरी भरी सब्जियां हो या रंग बिरंगे फल, तमाम भोजन सामग्री उन्हीं अन्नदाताओं की तपस्या का फल है, जो खेतों में मेहनत करते हैं, रखवाली करते हैं।

0: भोजन प्रसाद है, इसीलिए भोजन सामग्री बाजार से खरीदने से लेकर घर में पकाने तक कुछ खास बातों पर अगर नजर रहे तो कितना अच्छा हो। भोजन में पौष्टिकता का ध्यान तो रखा जाए, पकाते समय भी पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखा जाए, यानी खाना ना तो जरूरत से ज्यादा पका हो और ना ही अध पका हो। थाली में 56 व्यंजन हो ना हो, भोजन की चाह जरूर हो। यही से भोजन में स्वाद की भूमिका भी जुड़ जाती है। जहाँ तक संभव हो भोजन में षडरस और सभी रंग शामिल किए जाएं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम भोजन के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीने के लिए भोजन कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी ख्याल रखा जाए। रसोई से उठती खुशबू पास बुलाए और परोसी हुई थाली देखकर ही भूख से जुड़े एंजाइम खाने का न्योता दें, तभी भोजन किया जाए।
1: आलू की भाजी, बैंगन का भरता।

0: होंगे।
1: भोजन में पौष्टिकता, स्वच्छता, स्वाद के साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है, खासतौर से आज के दौर में जब उत्सवों समारोहों में लंबे लंबे मेन्यू शान की बात माने जाते हैं, ढेर सारे व्यंजन मेज पर सजाए जाते हैं और बाद में काफी खाना बर्बाद होता है। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कई सब्जियां और दालें बनवाने की बजाय एक या दो डिशेस तैयार करके भी लजीज खाना परोसा जा सकता है। अक्सर दावतों में पहली बार में ही अपनी प्लेट लबालब भर ली जाती है और फिर थोड़ा बहुत खाकर बचे हुए ढेर सारे खाने समेत डस्टबिन तक पहुंचा दी जाती है। बात सिर्फ दावतों तक ही सीमित नहीं है, घर में भी अक्सर होने वाली खाने की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए बाजार से जरूरत मुताबिक भोजन सामग्री लाई जाए, उसे एयरटाइट डिब्बों में रखा जाए, साथ ही पकाते वक्त निर्धारित मात्रा में ही भोजन बनाना होगा और जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाना परोसने से बचना होगा, क्योंकि जो चीज पसंद आ रही है उसे दोबारा भी लिया जा सकता है। अगर बड़े इस तरह समझाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे कि जो भी परोसा जाए उसे मुंह बनाकर नहीं बल्कि खुशी से खाना है।
0: ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मना।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही

0: रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश,

0: शविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, वक्त फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सतावाहन नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल उद्यानवी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत साहिल लुधियानवी के बोल हैं संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: हो सबसे हसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक हो तुमको।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और यह अगला गीत दिल ने फिर याद किया, इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में। जीएल रावल ने इस गीत को लिखा, सोनिक ओमिका संगीत।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा और विद्यार्थी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। मंत्री ने इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि फिट इंडिया केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने हर नागरिक से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में अवैध कोयला खनन अब केवल अपराध नहीं रहा बल्कि यह सत्ता, प्रशासन, पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ से चलने वाला एक संगठित काला साम्राज्य बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि धनबाद के महेशपुर स्थित एक प्लांट के पास तीसरी बार अवैध सुरंग का मिलना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बिना राजनीतिक संरक्षण

0: इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन संभव नहीं। झारखंड प्रवास के दूसरे दिन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रांची से बोकारो जाते समय कई स्थानों पर स्वागत किया गया। इस दौरान रामगढ़ और बोकारो जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा जय घोष और गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से राज्य की जनता में गजब का उत्साह है।
1: सत्ता के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत दिनों के बाद सांसद की धरती पर उपस्थित हुए हैं और उनका एक निजी कार्यक्रम है जिसके तहत वो बोकारो जा रहे हैं और वापस भी लौट किसी रास्ते के भी दो घंटे के बाद में लौटेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव के मामले में राज्य की सत्ता में शामिल गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्री ने रांची में कहा कि चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों के नामों का अंतिम निर्णय पार्टी लेगी।
2: गठबंधन का आपस में ही खींचतान है, सरकार की स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं काफी बयानबाजी आपस में लोगों का, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेडी के लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शायद ठीक नहीं है जो दिख रहा है।
0: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने आम लोगों से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत बीएलओ के घर आने पर सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि परिवार और रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक साझा करने और फॉर्म सही ढंग से भरने पर भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मंत्री ने कहा कि आम जनता के सहयोग से ही एक मजबूत और दर्शी मतदाता सूची तैयार हो सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक यात्री बस से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट बरामद किया है। पुलिस ने बस चालक और एक बस कर्मी को हिरासत में लिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध लॉटरी कारोबार का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन शामिल है। चतरा जिले में एक जांच चौकी के पास पुलिस बैरिकेड से मोटरसाइकिल टकराने से दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने आज बताया कि दुर्घटना बागरा रांची मुख्य मार्ग पर जब्बा जांच चौकी के पास हुई। दोनों मृतक दुंदुआ गांव के निवासी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पत्र शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हमें लिख भेजा है छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने। इन्होंने फरमाइश की है छोटी बहन फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। तो सुनिए अपना मनचाहा गीत।

मनचाही गीत कार्यक्रम में लीजिए। अब अगला खत हमने शामिल किया है खंडवा रोड सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मला वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण। इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली पहली बार मोहब्बत। गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू, लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। समीर के बोल, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफी, उन्हीं की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
4: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना कोई,

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है, पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए

0: होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्ला अंसारी, आसमा नास अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्लू डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल, उमेश सरोज, आरती रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का। और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है

राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने, साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने, और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरिसी, नईम इदरिसी और नदीम इदरिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए, अब मनचाही गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खान। वालिया करनाल राजा साहब से अभी मिला है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खान आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। चलो, कल की सी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
3: कहिए, कैसे आड़ा हुआ? कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
3: तेरे की हार हो गई, जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना आयुब?
2: जी, आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
3: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
3: है? हाँ जरूर जरूर। और लछवाले, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
4: जी बिल्कुल।
5: सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
5: हजूर ने मैंने याद किता ही है।
3: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
5: सौंपो जी सौंपो।
3: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
5: साड़ी मदद?
3: बस यही कि आप, मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
5: जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम, मैं उन्हीं जान दी तैयारी करता हूँ।
3: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
2: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के मानित ही रखूंगा।
3: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
2: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
3: और जाओ, गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
6: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
7: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम कादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
6: क्यों, क्या हुआ?
7: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
6: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
7: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्ड्री को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
6: उफ दादी जान,
7: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारहा दखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
6: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
7: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
6: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
7: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में ना आए।
6: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
7: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
6: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
7: उफ़, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीस की तरह।
6: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
7: तफसील तो यही है कि गुलाम कादर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
6: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बदज़ात कादर को हमारे हुजूर में पेश करो।
4: जो हुक्म आ लीजिए। आलम बना, गुलाम कादिर हाजिर है।
6: बदसात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाए और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल की तू शाही हरम में।
8: हुजूर, हुजूर, रहम।
6: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हराम खोर की कोड़ों से खा लूं।

कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे, कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है।

और बेगमें खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीरुल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहंशाह को मजबूर कर दिया, तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मनबहारी सिंह का ही सहारा है। अब्बा हुजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था, अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा? क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका फतह करूं, दुआबे के शहरों में फौज कशी करके अपनी कुव्वत बढ़ाऊं। कोल, जलेसर, सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चचा से मशवरा करके बहुत जल्द अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाऊंगा।

0: नामवर, किसने भेजा है ये खत?
1: हुजूर, ये खत पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा।
0: तुम बाहर जाओ।
1: जी अच्छा हुजूर।
0: तो ये है वो खत। अजीज
2: नवाब गुलाम कादिर, बात तस्लीमात से तहरीर है कि किले और हरम की हालत फिलहाल बहुत नाजुक चल रही है। किले में हमारी बार बार तौहीन होती है, बादशाह अक्सर बदसलूकी करने लगे हैं। अगर तुम अपनी फौजी ताकत से किले पर कब्जा कर लो और शाह आलम सानी को तख्त से हटाकर बेदार बख्त को तख्त नशीं कर दो तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही तुम्हें 12 लाख रुपहली सिक्के बतौर इनाम अता करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को अपना मददगार ही समझो। किले तक पहुंचने के बाद जो कुछ इमदाद हम और हमारे वफादार खादिम कर सकेंगे जरूर करेंगे।
0: तो ये खत बादशाह की दादी जान और बेगम महल साहिबा की तरफ से है। ये वही जमानी बेगम है जिन्होंने मेरे कोड़े लगवाए, जलील किया और आज मुझसे इमदाद की तालिब है। कहीं कोई दगा तो नहीं? नहीं, नहीं, कोई दगा नहीं। इतने दिन किले में रहा, बेगमों की मुहरें अच्छी तरह पहचानता हूं। क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। हर तरफ हमारी फतह हो रही है, हमारा सितारा बुलंदी पर है। अब दिल्ली की तरफ कूच करना हमारे हक में होगा।

0: मियां शमशेर खां, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही है।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगाकर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: उफ, हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मन बहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

वाह, तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक दो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेह याबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह है। अब किसी को भी मैं बच्चों के घरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगम ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी। आहा!

0: नले लासब माल कहाँ छुपा रखा है?
1: हुजूर, मैंने तो आपकी मदद ही की है।
0: देता है कि छुरा पार कर दूं?
1: अभी सब देता हूं हुजूर, अभी सब देता हूं।
0: ला निकल।

0: नाचो। मैं कहता हूं तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना होगा। कोई रहम नहीं, नाचो।
1: इन शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता है कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
0: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार।

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची हैं।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है, ये बला कैसे आन तक की?

0: बीसाजी, इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरदार इंगले,
1: श्रीमंत
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान, हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

0: बना तो लेकिन ये दुर्दशा, बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया। जहां बना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने, हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली।
1: मेरे मसीह, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है।
0: हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शें, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा।
1: खुदा हाफिज़।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहांपनाह, सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में उस नीच कादिर के आंख, कान, नाक, होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत पे भेजे हैं।
0: इंगले, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ये उस कमीने की आंखें हैं, ये कान, हाँ दोनों कान, ये नाक, ये उंगलियां, वाह ये शायद उसके होठ हैं। वाह बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूके और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
1: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी इसी वक्त।
2: नहीं,
1: ये है सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
3: हुजूर,
0: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
3: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जाने बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
0: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या इनाम चाहते हो?
3: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
0: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके। इस गुलाब के फूल को अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश हैं। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधव जी सिंधिया भी शामिल है।

लाला शीतल दास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की।
2: के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा और विद्यार्थी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। मंत्री ने इस दौरान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि फिट इंडिया केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में अवैध कोयला खनन अब केवल अपराध नहीं रहा बल्कि यह सत्ता प्रशासन पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ से चलने वाला संगठित काला साम्राज्य बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि धनबाद के महेशपुर स्थित एक प्लांट के पास तीसरी बार अवैध सुरंगों का मिलना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने आम लोगों से अपील की है कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत बीएलओ के घर आने पर सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। मंत्री ने कहा है कि परिवार और रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक साझा करने और फॉर्म सही ढंग से भरने पर भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक यात्री बस से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट बरामद किया है। पुलिस ने बस चालक और एक बस कर्मी को हिरासत में लिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध

0: 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था, आपके घर का क्या माहौल था, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
1: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग कि नहीं। तो वो चीजें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहां पर शहादत हुई रिजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे चल रहे थे और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए, बोलते हैं यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है, बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
0: जी।
1: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
0: जी।
1: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
0: बिल्कुल।
1: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
0: ठीक है।
1: तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है
0: जी।
1: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस। तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ठीक है, मतलब

0: कि हाँ शुभ दिन है, ये है, वो
1: हाँ
0: है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर.
1: हाँ
0: तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है.
1: जी
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे. ठीक है, अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये
1: अच्छा
0: तो ओपन सीक्रेट है. तो फिर ठीक है, आशा दीदी गाएगी. फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में. अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे. लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया. तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में
1: बाद
0: हुआ,
1: में हुई
0: ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने.
1: दिल्ली
0: तो
1: में।
0: रिहर्सल कैसे करेंगे, एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक ही
1: अच्छा
0: बार चले गए दिल्ली, है ना. लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने
1: पकड़ने
0: में.
1: में हाँ
0: और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया. प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन.
1: अच्छा
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां
1: हाँ
0: गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना.
1: जी
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए. गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गवाए.
1: जी
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा
1: लो
0: पर, वीरों ने है प्राण गवाए. लोग एकदम सुनना
1: स्तब्ध रह
0: शुरू
1: गए।
0: किया कि
1: हाँ
0: ये क्या है. जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है. और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे. और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो.
1: था
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको,
1: जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उनके मन में भी ग्लानि बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी. तो वो चीज को सुनकर के सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानि थी,
1: जी
0: गिल्ट फीलिंग.
1: जी
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है, ये
1: अच्छा
0: लिखा किसने है.
1: जी
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं. तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण. उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बंबई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बंबई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ. तो ये बात हो गई. दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया. मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो
1: जी
0: छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है. हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में, हमारे देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं,
1: जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी
0: लक्ष्मीकांत जी.
1: जी
0: वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है, तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में,
1: अच्छा
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: सुना. तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना. इट वॉज एब्सोल्यूटली, मैं तो कहूं कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी,
1: जी जी
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा, और उनको ये कहते हुए सुना,
1: सुना।
0: ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ.
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए, और नेचुरली भूल गए, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है. ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए,
1: जी
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया। वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों आपने लिखा है, अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं
1: जी।
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रहे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी,
1: बताइए।
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो जाते थे दिल्ली।
1: जी, जी जी
0: तो ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है
1: कि जो होता है अच्छे
0: अच्छा
1: के
0: होता
1: लिए
0: है।
1: होता है जी।
0: उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा,
0: इसी गीत को
1: आप सुनाएं।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया
0: जी।
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है
1: जी।
0: ए मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले, ए मेरे वतन के
0: जी,
1: लोगों,
0: जरूर जरूर,
1: जरा आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए, हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरी वतन की लोगों
1: जी।
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए
1: जी।
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल लगता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक

0: खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
1: जी
0: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे,
1: जी
0: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
1: बिल्कुल
0: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास, और कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे, हम लोग
1: जी
0: खड़े। तो ये बात थी। एक तो ऐसा था कि लोग आते थे, और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
1: जी
0: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे हमारे घर पे, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
1: जी
0: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए,
1: जी जी
0: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
1: जी
0: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
1: बिल्कुल
0: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे।
1: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू
0: हाँ,
1: था।
0: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो हम मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था? न्यूज, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो चार पांच अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
0: हाँ, अभी अभी भी यार, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार,
1: जी
0: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे, और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये छह अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
1: इतनी भाषाओं का
0: इतनी भाषाओं के हमारे वहां अखबार
1: आते थे
0: आते
1: और
0: थे
1: उसे पढ़ा
0: और
1: जाता था।
0: आज भी आते हैं, वो मैंने
1: जी
0: बंद नहीं किए।
1: जी
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं
1: नहीं
0: होती।
1: होती।
0: बीबीसी न्यूज, उनका रोज का सवेरे का 5:45 बजे का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में
1: जी
0: आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था।
0: हाँ,
1: जी
0: एक नहीं, दो तीन रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में तीन अलग अलग रेडियो बजते थे, तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा
0: जैसे मैंने कहा, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है, तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में।
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: हर कण कण
0: तो
1: में वो देशभक्ति
0: ये
1: का
0: जो
1: जज्बा था।
0: जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो,
1: वाह
0: अरे ओ रोशनी वालो।
1: वाह, क्या बात है। महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है
0: जी
1: ये,
0: जी
1: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को। गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

नफरत

0: आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए, ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी, और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसी, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: सबसे दुनिया में रहते हुए भी
1: उस
0: माहौल में रहते हुए भी,
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: और
1: वो
0: किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए?
1: हाँ हाँ नहीं नहीं लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पीदा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लहिरी ने
0: जी।
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी, मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो,
1: हाँ हम
0: जो
1: अभी
0: फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था कविताओं का?
1: हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ।
0: जी
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी, उसी दौरान उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
0: जी,
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए, कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही, निखिल प्रकृति लहलही विमल वातास बही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली थी। और आप अगर सुने एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: यही पैगाम,
1: ये वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए। तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उभाई जा रहा, और कुछ
0: यूनिवर्सल
1: नहीं।
0: ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते,
1: ठुकरा नहीं सकते,
0: भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम सुन लें?
1: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है,
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी, तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंधेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से। मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारे पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
0: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
0: जागृति
1: मिली हमको,
0: जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
1: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
0: जी जी।
1: और लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
0: अच्छा।
1: जब मिल गई आजादी, उसके 2-4 साल के बाद उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
0: बहुत बड़ा सवाल।
1: हाँ, तो ये

0: उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
1: इस देश को रखना मेरे
0: बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से, और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश
1: जी,
0: आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
1: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं, उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
0: हर एक लाइन सुनिए आप
1: जी।

0: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही है और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाकया हुआ था
0: जी,
1: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलते मैं कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ, संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपिनियर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं प्रदीप जी के साथ काम कर सकता हूँ।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में
0: जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत।
1: लकड़ा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भाजपा के कमल को राज्य में मजबूत करेगा। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री नवीन ने दोहराया कि भाजपा ने ही झारखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष किया और वही इसे संवारेंगे भी। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड दौरे से संगठन के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी काफी ऊर्जा और प्रेरणा मिल रही है। आज पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि इस दौरे से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। हजारीबाग स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए MBA और BBA पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। MBA के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तथा BBA के लिए 5 जुलाई निर्धारित की गई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। चतरा जिले में एक जांच चौकी के पास पुलिस बैरिकेड से मोटरसाइकिल टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने आज बताया कि दुर्घटना बागरा रांची मुख्य मार्ग पर जब्बा जांच चौकी के पास हुई। दोनों मृतक दुंदुआ गांव के निवासी थे। जापान के काका मीगाहारा में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 4-1 से पराजित किया। इस जीत में जमशेदपुर की नवल टाटा हॉकी एकेडमी के कैडेट आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोए का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। FM

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को श्वेता श्रीवास्तव का नमस्कार, जोहार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे, और इस समय बड़े प्यार से अपना कार्यक्रम सुन रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, इसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप सभी। आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि खेत से निकली फसल को उठाकर खाने लायक, टिकाऊ और टेस्टी बनाना। जैसे इसमें होता यह है कि जैसे मान लीजिए गेहूं खेत से लाए, है ना, फिर आटा बनाओ और फिर बिस्कुट बनाओ और फिर पैकेट में बंद होकर दुकान पहुंचा। इसके यही उदाहरण है। इसी आज ये उद्योग जो है ना, भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है। ये कृषि उत्पादों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और बाजार योग्य बनाने का कार्य करता है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में आज रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। इसमें रोजगार के प्रमुख अवसर हैं जैसे खाद्य उत्पादक प्रबंधक, फूड प्रोडक्शन मैनेजर, खाद्य उत्पादों के उत्पादन और देखरेख का काम, और फिर उत्पादन से जुड़े रोजगार तो मशीनों का संचालन हुआ उसमें, और फिर कच्चे माल की सफाई करना, पैकिंग हुआ और फिर छटाई हुआ, और फिर डेयरी, बेकरी, मसाला, तेल, फल और संबंधी बने सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों में से ये बहुत सारे कार्य हैं इसमें। और फिर गुणवत्ता नियंत्रण, ये भी इसका इसमें भी काम है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने का काम है, स्वच्छ और सुरक्षा मानकों का पालन करना, उत्पादों के नमूनों का परीक्षण, खाद्य सुरक्षा नियमों से निगरानी से काम निगरानी, ये सब काम है इसमें। और फिर पैकेजिंग और लेबलिंग, उत्पादों की सुरक्षित पैकिंग करना, पैकेजिंग करना, लेबल तैयार करना, उत्पादों की ब्रांडिंग और आकर्षक प्रस्तुति, पैकिंग सामग्री का चयन, ये सब भी काम है। साथ ही खाद्य उत्पादों का सुरक्षित भंडारण, कोल्ड स्टोरेज का संचालन का काम करना होता है, और माल की ढुलाई और वितरण का काम, ये तो बहुत सारे काम है इसमें। फिर विपणन और बिक्री का भी क्षेत्र में भी बहुत सारे काम है, जैसे उत्पादों का प्रचार प्रसार करना, बाजार में बिक्री बढ़ाना, और फिर क्या है कि ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना, नए बाजार की खोज करना। साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस उद्योग में स्वयं का व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है। जैसे अचार बनाने का, पापड़ और बड़ी बनाने का उद्योग, और फिर जैम जेली निर्माण, बेकरी उत्पाद, और फिर डेयरी उत्पाद जैसे दूध दही पनीर घी बनाने का काम, मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण, ये बहुत सारे काम है इस क्षेत्र में। साथियों, ये उद्योग रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, ये तो हुई हमारी बातचीत, और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना।

0: और दोस्तों, इस गाने के बाद हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक भेंट वार्ता। भेंट वार्ता ली गई है स्वच्छ भारत मिशन पर और जानकारी दे रहे हैं श्री राम कुमार जी और इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रकाश कुमार राणा। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: सफलता के लिए बहुत सी परंपराओं और कुरीतियों को तोड़ना होगा, विभिन्न समुदायों की भागीदारी बढ़ानी होगी और सरकार को हर स्तर पर गंभीर प्रयास करने होंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, जन सुविधाएं स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है, या महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने का समय है। तभी हम खुले में शौच करने की शर्मिंदगी से मुक्त होकर भारत को सही अर्थ में स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं पेयजल स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग के राम कुमार जी, जो कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक हैं। तो राम कुमार जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, ये योजना क्या है?
2: ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मूल उद्देश्य हमारे ग्रामीण परिवेश को खुले में शौच से मुक्त करना है। एक ऐसी कुप्रथा जो वर्षों से चली आ रही है, जिससे हमारा जीवन स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। ग्रामीण परिवेश का जीवन स्तर में हम मूल चूल सुधार, आवश्यक सुधार जो हम चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सभी ग्रामीण परिवेश को सदा के लिए खुले में शौच मुक्त करने का अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चलाया जा रहा है।
1: ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, ये कब लागू किया गया और इसका क्रियान्वयन कैसे करते हैं आप?
2: ऐसे योजना हमारी विभिन्न नामों से 1996 से चल रही है, लेकिन 2 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, एक नए रूप में, एक नए उद्देश्य के साथ, जिसका मूल उद्देश्य था सिर्फ शौचालय निर्माण न करके ग्रामीण परिवेश को खुले में शौच

0: मुक्त करना, जिससे ग्रामीणों की ग्रामीण परिवेश को एक स्वच्छ एनवायरमेंट दिया जा सके और उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार प्राप्त किया जा सके।
1: इसमें कैसे लाभुकों को शामिल करते हैं और कितना प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इसका क्या तरीका है?
0: इसके तहत 12,000 की प्रोत्साहन राशि ऐसे लाभुक जो जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जिसे हम सीमांत किसान और लघु किसान कहते हैं, जिनके पास भूमिहर जो मजदूर हैं, जो भूमिहर मजदूर हैं, दूसरे से जगह से वासित हैं उस गांव में, सभी वो SC ST हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं और विधवा परिवार जो विमेन हेडेड फैमिली है
1: जी।
0: ये सभी लोग इस लाभुक की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए वर्ष 2012 में एक बेसलाइन सर्वे किया गया, जिसमें ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया गया जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है और वो शौचालय बनाने में असमर्थ है। इस बेसलाइन 2012 के अनुसार ही ऐसे लोगों को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराती है
1: जी। खुले में मल त्याग खासकर महिलाओं का अपमान है और उनके स्वाभिमान पर खुली आघात है। इससे पता चलता है कि साफ सफाई केवल स्वास्थ्य का ही मुद्दा नहीं, बल्कि यह जीवन जीविकोपार्जन और इन सबसे ऊपर मानवीय गरिमा को भी प्रभावित करता है। तो आप बताएं कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन कैसे करते हैं और लाभुक को लाभ कैसे पहुंचता है
0: जी। इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग प्रखंडों को, पंचायतों को चयन करते हैं, ग्राम सभा के द्वारा ये चयन होके आता है, जो मुखिया काफी एक्टिव होते हैं, जहां के ग्रामीण काफी एक्टिव होते हैं, उनको प्रायोरिटी में चयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 15-16 में इस जिले के सभी 16 प्रखंड पंचायतों का चयन इस हेतु किया गया था, ODF हेतु लक्षित किया गया था। इसी दौरान हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा और ग्रामीणों के सकारात्मक पहल के कारण चमकता चुरचू अभियान चुरचू प्रखंड को ODF करने का कार्यक्रम चलाया गया। विगत 2 माह से निरंतर प्रयास करके लगभग शौचालय निर्माण का कार्य सभी चिन्हित लाभुकों के लिए चमकता चुरचू अभियान के तहत चुरचू में करा लिया गया है। इसके कार्यान्वयन की पद्धति यही है कि हम लोग पहले जो चिन्हित लाभुक हैं उनके अनुसार ग्राम जल स्वच्छता समिति को 12,000 की राशि उपलब्ध करा देते हैं और उस 12,000 राशि को उपलब्ध कराने के बाद ग्राम सभा के द्वारा बैठक की जाती है कि ऐसे लाभुक जो अपना शौचालय स्वयं बनाना चाहते हैं, बनाने को इच्छुक हैं, जो चिन्हित परिवार में आते हैं, जो बेसलाइन सर्वे में जिनका नाम है, उनको कहा जाता है कि भाई आप अपना शौचालय बनवा लो और जो पहले शौचालय बनाएगा उससे पहले उसकी राशि उपलब्ध होगी। तो पहले आओ पहले पाओ का ये एक रेस टाइप का, एक कॉम्पिटिशन टाइप का लोगों में किया जाता है, ताकि एक देखा सीखी लोग सीख सकें और अपना अपना शौचालय बना सकें। जहां तक देखा गया शौचालय की मांग बहुत देखी जाती है, हर कोई चाहता है कि मेरा शौचालय बने, लेकिन शौचालय के उपयोग की बात आती है तो लोगों में थोड़ा सा आनाकानी की भावना आ जाती है। तो शौचालय निर्माण में एक पद्धति यह है कि हम ग्रामीणों को, ग्राम जल स्वच्छता समिति को राशि उपलब्ध कराते हैं, वहां से जब सभी लोग शौचालय अपना बना लेते हैं, सरकारी प्रक्रिया के तहत जांच हो जाती है, मुखिया सत्यापित करते हैं कि भाई शौचालय इनका बन गया और इसकी लागत कम से कम 12,000 है। हमारे कन्या अभियंता भी इसका 100% सत्यापन करते हैं। उसका फोटोग्राफ होने के बाद 12,000 की राशि कोई समारोह आयोजित करके माननीय चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा लाभुकों को उपलब्ध करा दी जाती है।
1: तो क्या वे अपने जमीन में करते हैं या तो?
0: नहीं, शौचालय का निर्माण सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन पे की जानी चाहिए और वही हम लोग प्रमोट भी करते हैं। अगर वो दूसरे की जमीन पे करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, वो उसे अक्वायर कर लेगा तो दिक्कत होगी उनके लिए। तो बेहतर यही होता है कि अपने जमीन पे ही लोग बनाएं और अभी तक तो ऐसा ही देखा गया है कि लोग अपनी जमीन का ही उपयोग अपना शौचालय बनाने के लिए करते हैं।
1: खुले में शौच करने से क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलता है और इसके विषय में आप क्या कहना चाहिएगा?
0: एक बार शौचालय बनने के बाद लोगों को एक बार समझ में आ जाता है कि भाई ये शौचालय क्यों बनाया गया। उनको ये बात समझाने की जरूरत पड़ती है, कई बैठकें आयोजित की जाती है, बैठकों में हम चर्चा करते हैं कि अगर आप खुले में शौच को जाते हैं तो इस खुले में शौच जाने की वजह से जो हमारी जो बच्चियां हैं उनका हाइट हम लोग देख रहे लगातार गिरता चला जा रहा है
1: जी।
0: तो अभी एक किसी पत्रिका में मैंने पढ़ा था, WHO का सर्वे आया था, उसमें बताया गया था कि लड़कियों का कद कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है ये खुले में शौच जाना। इसमें जो कृमि है, इसमें जो माइक्रोब्स हैं, वो हमारे खाने तक, हमारे मल जो है मुख तक आता है, जिसके वजह से ऐसी घटनाएं देखी जा रही है। दूसरी बात, बरसात के दिनों में अगर हम देखते हैं तो खुले में शौच जाने से जो शौच का जगह होता है वहां से जो गंदगी है वो शौच किसी न किसी रूप में हमारे जल स्रोत तक पहुंच जाता है और उससे बुरी तरह से दूषित करता है, प्रभावित करता है। अब उस जल को हम ग्रहण करते हैं तो इस तरह से हम न सिर्फ बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो जब इस तरह की चर्चा लोगों में की जाती है तो उनको एक सेंसिटाइज करने का प्रयास किया जाता है कि आपके इस गलत बिहेवियर के चलते, गलत आदतों के चलते ये असर पड़ रहा है, आपके घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं, एक शौचालय

0: जो बनाया गया है जिसका नियमित इस्तेमाल करके इन सब चीजों को रोका जा सकता है और मल से मुख तक का एक बैरियर को क्रिएट करने का कार्य इस शौचालय के द्वारा किया जाता है जिससे मानव मल का समुचित निपटान किया जा सके।
1: शौचालय बनाने के बाद रख रखाव में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि स्वच्छता जहां होगा वहां रोग या बीमारी का प्रभाव वहां पे कम पड़ेगा।
0: देखिए शौचालय अगर मेरा है तो उसका रख रखाव करने की जिम्मेवारी हमारी है। हम अपना घर बनाते हैं, हम आंगन बनाते हैं, तो हम देखते हैं हर पर्व त्योहार में डेली उठ के उसमें झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, तो अगर हम उसका नियमित उपयोग करेंगे तो उसको साफ करने की भावना हमें जगेगी। लेकिन अगर बना के उसे छोड़ देंगे तो अन्यत्र कार्यों के लिए वो उपयोग किया जाएगा और वो कुछ दिनों के बाद डिफंक्ट शौचालयों की सूची में आ जाएगा। इससे सरकारी राशि का न सिर्फ दुरुपयोग होगा बल्कि एक जो उनको सुविधा दी गई थी उस सुविधा से वो फिर दोबारा वंचित हो जाएंगे और उनका घर फिर से बीमारियों से पीड़ित रहेगा और वो बाकी चीजों के लिए भी परेशान ही रहेंगे।
1: और हमारे ग्रामीण समाज में छोटे परिवार बड़े परिवार दोनों ही रहते हैं और खासकर देखा जाता है कि अगर शौचालय बन गया मेरा तैयार हो गया है जहां आत्मसम्मान की बात आती है तो वहां क्या करते हैं कि दो या तीन परिवार तो शौचालय का उपयोग कर रहे हैं बाकी लोग क्या करते हैं बाहर चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए ताकि वे अपने शौचालय का उपयोग करेंगे और अपने गांव को अपने समाज को अपने क्षेत्र को वे मतलब इस गंदगी से दूर रखेंगे।
0: देखिए खुले में शौच मुक्त की मूल भावना यही है कि उस ग्रामीण परिवेश में जितने लोग रहते हैं सभी शौचालय का नियमित उपयोग करें
1: जी।
0: कोई भी एक भी व्यक्ति बाहर शौच के लिए ना जाए चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो या जवान हो या स्त्री हो या पुरुष हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये पूरा हमारा गांव पूरा हमारा समाज पूरा प्रखंड खुले में शौच मुक्त हो गया। तो हम देखते हैं कि महिलाओं को इस शौचालय की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है क्योंकि अगर उन्हें शौच आता है तो या तो वह रात होने का इंतजार अंधेरा होने का इंतजार करती है या सुबह सूर्य उगने से पहले जाती है। अगर बीच दौरान में कभी उनकी तबीयत खराब हो गई कुछ हो गई तो उनके लिए बड़ा एम्बेरेसिंग हो जाता है कि भाई वो शौच के लिए कैसे जाएं। ऐसे में उनको पेट दर्द और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो महिलाएं एक ऐसे साधन है अगर महिलाओं को हम तरीके से सेंसिटाइज कर लें तो वो एक इसे आंदोलन का रूप दे सकती हैं और जो हमारे लोकल महिला मंडल ग्रुप्स होते हैं जल सहिया होते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं जिसमें सेविका सहायिका होती है इन सबके ग्रुप के द्वारा महिलाओं को व्यक्तियों को बच्चियों को सेंसिटाइज करने का प्रयास किया जाता है ताकि वो अपने व्यवहार में एक परिवर्तन लाते हुए शौचालयों का नियमित उपयोग करें जिससे कि किसी तरह की परेशानियों का सामना उन्हें भविष्य में न करना पड़े। क्योंकि अगर वो बाहर जाते हैं तो न सिर्फ उन्हें रात में सांप का डर है बरसात में गिरने का डर है और अगर छेड़खानी वगैरह हो गई तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है
1: और गांव में जो जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं हमारे जल स्रोत हैं
0: और सबसे बड़ी बात दूषित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि इस मानव मल का समुचित निपटान किया जा सके और हर व्यक्ति खुले में शौच जाना हमेशा के लिए बंद कर दे।
1: तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गांव में आप कैसे कैसे प्रतिनिधियों को आप सचेत किए हैं या तो इससे जोड़ के रखे हैं ताकि ये जो कार्य है आपका सफल हो और हमारा समाज हमारा गांव इस जो खुले में शौच से मुक्त हो।
0: इस कार्यक्रम को गांवों तक ले जाने के लिए वहां के ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए हमारा एक बहुत सशक्त संस्था है वो ग्राम जल स्वच्छता समिति है। ये संस्था अन्य संस्थाओं जैसे VHND की संस्था है आपके विद्यालय की समिति विद्यालय समिति विद्यालय प्रबंधन समिति है इसके अलावा आंगनवाड़ी की जो समिति है इन सबके साथ कोऑर्डिनेट समन्वय स्थापित कर नियमित बैठकों को आयोजित करते हैं क्योंकि और इसके बारे में इसकी सभी जानकारी लोगों को देते हैं उन्हें सेंसिटाइज करने का प्रयास करते हैं उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि भाई आप खुले में शौच ना जाएं। अगर खुले में शौच जाते हैं तो इतनी सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है और एक व्यवस्था एक सुविधा जो सरकार के द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई है उसका नियमित उपयोग करें तो आपके जीवन स्तर में आपके स्वास्थ्य में आपके आर्थिक स्थिति में काफी अपेक्षित सुधार पाया जा सकता है
1: बदलाव हो सकता है।
0: हमारे यहाँ से ये इस वित्तीय वर्ष के पूर्व तक मतलब ये अभी हम लोग 16-17 में आ गए 15-16 तक जितने हमारे विद्यालय थे उनको शौचालयों से आच्छादित किया जाना था। उसके बाद कुछ कॉरपोरेट के सहयोग से जैसे हमारे NTPC है CCL है और कुछ हम लोगों के द्वारा इस विभाग के द्वारा जिला जल स्वच्छता मिशन प्रकल्प के द्वारा ऐसे सभी विद्यालय जो शौचालय की सुविधा से विहीन थे उन सबों को शौचालय के निर्माण से आच्छादित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जितने भी सरकारी भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें भी शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। कुछ 80 या 81 शौचालयों की सूची अभी प्राप्त हुई है जो सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र है जहां शौचालय की सुविधा नहीं है वहां शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद अभी हमारे स्कीम में जो इस वित्तीय वर्ष से किसी भी संस्थागत शौचालयों का निर्माण नहीं किया जाना है, क्योंकि जो हमारे निर्धारित लक्ष्य थे उसे प्राप्त किया जा चुका है। और अगर हम वैसा करते हैं तो हम एक ही योजना का दोहरीकरण करते हैं बार बार, जिससे पैसा का अनावश्यक दुरुपयोग होगा, अनावश्यक उसका व्यय होगा।
1: ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का निर्धारित लक्ष्य क्या है?
0: जी, हमारा जो लक्ष्य था इस वित्तीय वर्ष का 18,108 शौचालय बनाए जाने थे, इसके विरुद्ध हम लोगों ने 20,373 शौचालयों का निर्माण
1: हो चुका है
0: जी किया है। इस वित्त वर्ष का लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस वित्तीय वर्ष में पूरे हजारीबाग जिले को ODF खुले में शौच मुक्त के लिए लक्षित किया गया है। और हम लोगों का प्रयास होगा, हम सभी माननीय हमारे जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, हमारे जितने भी माननीय विधायकगण सांसदगण हैं, हमारे जितने भी नेचुरल लीडर्स हैं, धार्मिक लीडर्स हैं, सबसे हम अनुरोध करेंगे कि ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करें, ग्रामीणों से चर्चा करें और ये प्रयास करें कि भाई वो अपना शौचालय बनाएं और ये प्रोत्साहन की राशि सीधे अपने खाते में पाएं, जिससे कि शौचालय का समुचित लाभ उन्हें प्राप्त हो सके और इससे न सिर्फ वो बल्कि अपने समाज को भी लाभान्वित कर सके।
1: तो अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारा समाज, हमारा गांव खुले में शौच से मुक्त हो, इसके लिए आप अंत में क्या कहना चाहेंगे ताकि वे जागरूक हों और अपने इस कार्यक्रम से जुड़े और लाभ ले सकें?
0: खुले में शौच जाना एक ऐसी कुप्रथा है जो सदियों से चली आ रही है और इस प्रथा को अगर हम डंटा घुमा के या छड़ी घुमा के चाह रहे कि हम लोगों के एक आदत को, एक व्यवहार को जो काफी जमाने से चली आ रही है बदल दें, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब हर आदमी का पार्टिसिपेशन उसमें 100% होना शुरू हो जाए
1: जी।
0: तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्कूल इज अ गेटवे टू सैनिटेशन, बच्चों को, महिलाओं को सबसे ज्यादा इसमें सेंसिटाइज करके, प्रेरित करके अगर हम आगे बढ़ें, हमारे जितने भी नए चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं जो काफी सकारात्मक रूप से इस योजना को हाथों हाथ ले रहे हैं और लोगों के साथ वो चर्चा कर रहे हैं और इस योजना को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनका ये इंथुजियाज्म, उनका ये ग्रामीणों के प्रति जवाबदेही जो दिखती है, अगर इसी तरह से सकारात्मक रूप से नियमित वो बैठ के करें और लोगों के बीच इस चीज को प्रचारित करें कि भाई हर चीज हमारे पास है, फिर हम शौचालय के लिए सरकारी राशि का ही मुंह क्यों ताकते रहें, हम बना लें इसको, इससे सुविधा तो हमें मिलनी है, सरकार को तो कोई सुविधा मिलनी नहीं है। अगर हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा तो हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, हमारा अनावश्यक व्यय कम हो जाएगा, हम अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, अच्छे खाना खा सकते हैं। तो हर चीज के लिए सरकार की तरफ देखना उचित नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है उसका सही तरीके से समुचित उपयोग तभी होगा जब हर व्यक्ति ओनरशिप लेगा कि भाई ये हमारी चीज है, ये जो बन रहा है ये हम अपना बना रहे हैं, इस उद्देश्य से बना रहे हैं। और ऐसा बनाने के बाद हम कई कुप्रथाओं से निजात पा सकते हैं, कई दुर्घटनाओं से हम निजात पा सकते हैं और कुल मिला के स्वच्छ भारत मिशन के जो मूल भावना है, खुले में शौच मुक्त करना, खुले में शौच मुक्त हजारीबाग, खुले में शौच मुक्त झारखंड और खुले में शौच मुक्त भारत की जो अवधारणा को हम लोग पूरा कर सकते हैं।
1: हम लोगों को यही मानना होगा कि स्वच्छ भारत के निर्माण एवं देश की छवि सुधारने का यही सही समय और अवसर है। जब स्वच्छता संबंधी बातें आदतों में शामिल हो जाएगी तो बदलाव भी खुद ब खुद दिखने को मिलेगा। तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी अनेक जानकारी दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, स्वच्छ भारत मिशन पर ली गई थी ये भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे थे इस विषय पर श्री राम कुमार जी और इनसे बातचीत कर रहे थे प्रकाश कुमार राणा। और अब लीजिए सुनिए ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम युवा तरंग।

0: दादा कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, सिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
2: आईडिया कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: सभी दोस्तों को श्वेता श्रीवास्तव का नमस्कार, जोहार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और इस समय अपने सारे दिन भर के काम को निपटाकर बड़े प्यार से अपना कार्यक्रम सुन रहे होंगे। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और आपकी शाम को खूबसूरत बना देते हैं। मिलकर आइए आनंद उठाते हैं खूबसूरत से गाने का।

बहुत ही खूबसूरत सा गाना था। हम समझते हैं कि आप सबको भी ये गाना बहुत पसंद आया होगा। और अब चलिए हम कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जान है तो जहान है, ये बात सभी जानते हैं, है ना? और हमारा जीवन जो है वो बहुत ही अनमोल है। हमारे जीवन में यातायात नियमों का महत्व बहुत ज्यादा है साथियों। क्या है कि क्या कहते हैं, यातायात नियम जो है वो सड़क पर चलने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में। जैसे यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होती हैं और लोगों की जान जो है वो सुरक्षित रहती है। हेलमेट हुआ, सीट बेल्ट हुआ और गति सीमा जैसे नियम जो है वो चालक और यात्रियों के लिए बहुत ही, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, इसलिए इन्हें ज़रूर पहनना चाहिए वाहन चलाते वक्त। और नियमों के पालन करने से दोस्तों क्या है ना कि यातायात जो है वो सुचारू रूप से चलता है और अव्यवस्था जो है वो नहीं फैलती। और साथ ही समय की भी बचत होती है। ट्रैफिक संकेतों और नियमों का पालन करने से जाम कम लगता है और लोगों का समय जो है वो बचता है। ये यातायात नियम नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना पैदा करते हैं। नियमों का पालन होने पर क्या है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड हुआ और पुलिस वाहन, है ना, ये जो है आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। साथ ही नियमों का पालन करने से जुर्माना और क्या कहते हैं कानूनी कार्रवाई से आप बच सकते हैं। तो यातायात के नियमों का पालन करना बहुत ही अच्छा है, आज करना चाहिए। दोस्तों, यातायात नियम केवल कानून नहीं है बल्कि हमारी और दूसरों की सुरक्षा का आधार है। सुरक्षित, व्यवस्थित और जिम्मेदार समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है और करना चाहिए। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गाना।

0: और दोस्तों, इस गाने के बाद हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक भेंटवार्ता। भेंटवार्ता है वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन के संबंध में। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: आज हम चतरा आए हुए हैं और आज हम लोग चतरा जो आए हुए हैं केवीके चतरा, और हमारे साथ एक वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा। सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार है।
2: जोहार आपको भी।
1: डॉक्टर साहब, हम लोग जैसा कि जानते हैं, खास करके सिर्फ सब्जी की खेती या धान की खेती या गेहूं की खेती नहीं, इसके अलावा बहुत सा खेती जो होता है वो मुख्य तौर से, जैसे कि आज के डेट में देखा जाता है, बकरी पालन है, सुकर पालन है, मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है, बहुत तरह का, मतलब आज के डेट में खेती किसानी में अंग एक रूप से बना हुआ है और दूसरे एक दूसरे का पूरक है। तो सबसे बड़ा चीज आज किसान के बात हम करते हैं, खेती के साथ अगर किसान भाई दो चार बकरी अगर पालते हैं, पालन करते हैं, तो बहुत ही अच्छे का सौदा होता है, क्योंकि ये माना गया है गरीबों का एटीएम माना गया है बकरी पालन को। तो सबसे पहले आपको कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहना सही है, जो झारखंड की कृषि है ये वर्षा आधारित कृषि है, और यहाँ पे किसान सिर्फ अगर खेती करें तो उससे उनकी जोखिम ज़्यादा होती है, और किसानी के साथ साथ खेती के साथ साथ अगर वो पशुपालन को अपनाते हैं तो वो ज़्यादा मजबूती से ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये परंपरागत तरीके से झारखंड की कृषि में पशुपालन एवं खेती दोनों का आपसी समन्वय रहा है। जो भी किसान खेती करते हैं साथ में पशुपालन करते ही हैं, और पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जो उनको सालों भर का घर में रोजगार देता है। लेकिन जो झारखंड के किसान हैं वो खेती को या पशुपालन को अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। व्यावसायिक रूप में बहुत कम ऐसे किसान हैं जो झारखंड में अग्रणी हैं, लेकिन अधिकतर जो छोटे हमारे किसान हैं वो व्यावसायिक रूप से न करके वो अपने जीवन यापन के रूप में ही पशुपालन या खेती कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ सुझाव होगा कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से पशुओं के प्रति लोगों का वो आकर्षण बढ़ा है, लोग मांस बकरी का हो या मुर्गी का हो या अन्य जो उत्पाद हैं पशु के, दूध का खपत बढ़ी है, लोगों का आय बढ़ा है, तो ऐसे में अगर किसान व्यवसायिक रूप से पशुपालन को अपनाते हैं तो उनको काफ़ी लाभ होगा।
1: तो पशुपालन में एक अंग होता है बकरी पालन। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बकरी पालन में आवास प्रबंधन बहुत ही जरूरी होता है, तो किस तरह का आवास होना चाहिए किसान को?
2: बकरी पालन हमारे छोटे भूमिहीन और सीमांत किसानों का एक मुख्य व्यवसाय है। चतरा जो क्षेत्र है, मैंने देखा यह भी पठारी क्षेत्र है, यहाँ के जमीन में ऊपरी जमीन है, और ऊपरी जमीन में बकरी पालन सबसे उपयुक्त पशुपालन माना गया है। जंगलों से भरा प्रदेश है तो बकरियाँ जंगल में चरना पसंद करती हैं, गाय की तरह वह खूंटे में बंधी हुई और भूसा पुआल खाने वाले पशु प्राकृतिक रूप से बकरियाँ नहीं हैं, तो ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए बकरी पालन एक उपयुक्त व्यवसाय है। अब बात आती है कि बकरी पालन जब करें तो किस तरह के बकरियों का नस्ल का चयन करें। तो नस्ल की जब बात आती है तो मैं सर्वप्रथम यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ आप पारंपरिक तरीके से जो पालते हैं जिन नस्लों को, वो आपके घर के नस्ल हैं और उसमें किसी तरह की असुविधा नहीं है। वो यहाँ पे पूर्ण रूप से अडाप्टिव हैं, माने यहाँ के आबो हवा में वो ढल चुकी हैं। तो मेरा तो सबसे पहला चॉइस होगा कि आप यहाँ के देसी नस्लों को लेके व्यावसायिक रूप से बकरी पालन करें, और मैं जैसा देख रहा हूँ कि यहाँ की बकरियों का जो आकार प्रकार है वो मध्यम आकार की बकरियाँ हैं, और जहाँ तक हमें लगता है कि ये बच्चा देने की भी इनकी क्षमता बहुत बुरी नहीं होगी। बस यहाँ हमारी जो कमियाँ हैं उसको आप समझें, यहाँ पे जो बकरियों का पालन करते हैं तो उसमें झुंड में अच्छे नर का आपको तैयार करना है, अच्छे नर बनाने हैं। देखा गया है कि हमारे जो झुंड है उसी में से हम लोग कोई जो कमजोर बकरा है उसको हम लोग बध्याकरण नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और जो मजबूत हमारे नर बच्चे होते हैं उसको हम लोग बध्याकरण करके खस्सी बना देते हैं, या सोच के कि इससे हमको लाभ ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो कमजोर होते हैं उसको हम लोग बध्याकरण नहीं करते हैं, और आने वाले दिनों में वही धीरे धीरे नर का रूप लेता है। तो सबसे पहले हमारा जो नर का चुनाव है वही सबसे गलत हम लोग किसान कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप नर का अच्छा चयन करें जो छोटे में मजबूत रहा हो, जो ऐसे मादी बकरी का बच्चा हो जो दो या तीन बच्चा दिया हुआ नर हो, और उसको सिलेक्शन करें। और एक जरूर ये भी बात का ध्यान रखें कि एक झुंड में जो बकरियां हैं उस झुंड का नर आप एक सांड के रूप में न तैयार करके दूसरे झुंड का या

0: अपने गांव से हट के दूसरे पंचायत का झुंड से आप एक अच्छे नर का चयन करें और उसको भविष्य के लिए एक सांड बनाएं। तो सिर्फ अगर यही करते हैं तो आपके बकरी पालन में, देसी बकरी पालन में भी आप काफ़ी उन्नयन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो भी थोड़े बहुत संसाधन से परिपूर्ण जो किसान हैं, जिनके पास क्षमता है, वह जमुनापारी या बीटल, जमुनापारी से भी बीटल यहाँ काफ़ी सुटेबल ब्रीड पाया गया है झारखंड के लिए, खास करके उससे जो हम लोग ब्रीड को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, नस्ल सुधार की बात करते हैं, उसमें बीटल एक अच्छा नस्ल हो सकता है। और अगर किसान चाहें तो बकरीद गोट के बकरीद बकरियों को भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें सिरोही का काफ़ी प्रचलन है या बीटल का भी काफ़ी नाम है, तो इसमें क्रॉस ब्रीडिंग पे वो जा सकते हैं। लेकिन हम बहुतायत में किसानों को कहेंगे कि आपकी देसी बकरियों का आप अगर नस्लों में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हीं के बीच में भी आप सुधार कर सकते हैं।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात बताए कि नस्लों को हम सुधार कैसे करेंगे और किस तरह से यहाँ लालन पालन करेंगे, वो भी आप बताएं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बकरियों में खास करके देखा जा रहा है कि अभी जो लोग बरसात से ठंडे के मौसम में प्रवेश कर चुके हैं और बकरियों में बीमारी अत्यधिक ठंडे के मौसमों में देखा जाता है, और ख़ास करके बकरी और बकरी के बच्चों में, तो हम इसका कैसे देख रेख करेंगे?
0: ये जो मौसम है बरसात का मौसम, इस बार का बरसात का मौसम काफ़ी लंबा रहा है और विगत 4 महीने से लगातार बारिश होती रही है, तो जो बकरी पालक किसान हैं उनको काफ़ी जोखिम उठानी पड़ी है। बकरियों का स्वास्थ्य जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया है और आने वाला दिन भी ठंड पड़ने वाली है। चूँकि बारिश ज़्यादा हुई है तो आशा ये हो रहा है कि इस बार सर्दी भी ज़्यादा होगी, तो ये दोनों मौसम बकरियों के लिए प्रतिकूल मौसम होते हैं, इसमें कठिनाई होती है बकरी पालकों को, तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। उसमें सर्वप्रथम आपको यह ध्यान देना है कि जहां बकरियों को आप बांधते हैं, जहां कम से कम 8 से 12 घंटा बकरियां अपना समय बिताती हैं, वह जगह साफ सुथरा रखें, ऊंचा रखें, सूखा रखें, यह सबसे ज़रूरी बात है बकरी पालक के लिए। तो बकरी पालक अपने आवास, बकरी आवास को सूखा रखें, उसके फर्श को, उसमें मचान वगैरह बनाएं या पीढ़ा लगा के रखें या पुराने पलंग को आप बना के डाल के रखें, और उस पर वो बहुत स्वस्थ महसूस करेंगी, सूखा रहेगा वो चूँकि। और दूसरा, ठंड का मौसम में उसके खिड़की दरवाजे पर ठंडी हवा प्रवेश ना हो, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। शाम को के समय में हो सके तो घर को गर्माहट में लाने के लिए 1-2 बुरसी का भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि घर में एक गर्माहट बनी रहे। और सुबह के समय में भी आप जब शीत गिरना बंद हो जाए या शीत घास में जो है वो सूख जाए, तभी उसको चरने के लिए छोड़ेंगे। और नेचुरली वो लोग जब शीत बंद सूख जाता है तभी वो चरने के लिए जाते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी
0: और दूसरी है। हाँ, और एक मैं बात जोड़ना चाहूँगा कि अब बकरियों में ना, अब देखिएगा कि घर में बच्चे होंगे अब इस सीजन में, क्योंकि अधिकतर जो ब्रीडिंग होती है, जो पाल खाती हैं बकरियाँ, वो मई जून के महीने में, जुलाई के महीने में अधिकतर बकरियाँ पाल खाती हैं। तो अभी अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर में बच्चा देने का ये सीजन रहता है। और देखिएगा कि मौसम ठंडा होने के चलते जो छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत जल्दी ठंड लगती है और वो निमोनिया से भी ग्रसित हो सकते हैं। तो ऐसे में छोटे बच्चों के लिए आपके घर में अगर पुराना स्वेटर हो या पुराना कंबल हो, उसको छाती ढकने के लिए एक जैकेट नुमा जरूर आप बना के बच्चों के लिए रखें, और संध्या के समय में और सारे रात और सुबह तक जब तक धूप नहीं होती है तब तक उनको पहना के रखें, तो इससे आप बहुत हद तक देखेंगे कि बकरियों में निमोनिया जैसे रोग से आप बचाव कर सकते हैं।
1: ये तो कुछ रोग का आप जिक्र किए, लेकिन कुछ बकरियों में देखा जाता है कि वो पतला, मतलब लैट्रिन करने लगते हैं और नाक से पानी आने लगता है, और कभी कभी पैर में क्या होता है कि वो जख्म होता है, पैर उठाते हैं, इससे किसान कैसे बचेंगे, बकरी पालन करने वाले किसान?
0: ये जो तीन आप कंडीशन बताए, तीनों का कंडीशन का अलग अलग बीमारी हो सकती है। जैसे दस्त की आपने बात कही, अगर बकरियों में दस्त है और वो चरना खाना कर रही हैं तो ये संकेत है कि ये वो बकरी हो सकता है कृमि रोग से ग्रसित हो। अगर बकरी में दस्त है और वो खाना पीना भी छोड़ रही है तो हो सकता है कि कोई एक इन्फेक्शन से वो ग्रसित हो, और साथ में अगर पतला दस्त के साथ साथ अगर नाक से नेटा गिर रहा है तो इसका ये तात्पर्य हो सकता है, अगर उस साथ में बुखार भी हो तो एक बहुत भयावह बीमारी है जिसको हम लोग पेस्टिडेस पेटिट्स रुमिनेंट्स कहते हैं, PPR के नाम से गांव में लोग काफ़ी जानते हैं। PPR रोग भी हो सकता है जो जानलेवा होती है। तो अलग अलग श्रेणी में ये लक्षण आ सकते हैं, तो वो लक्षण के अनुसार आपको उसका इलाज करना है। जो PPR है उसका बचाव करना है आपको, उसका इलाज नहीं है, वो वायरल बीमारी है। तो PPR के लिए आप समयबद्ध टीकाकरण कराएंगे, एक बार अगर एक बकरी में टीकाकरण आप करा लेते हैं तो 3 साल के लिए वो सुरक्षित हो जाती है। तो PPR का टीका नियमित अपने फार्म में कराएं और समय समय पे उसमें कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग करें ताकि ये दस्त न हो। उनको कमजोरी होती है दस्त होने से, कृमि रोग से काफ़ी खून की कमी हो जाती है, तो उसको आपको देखना है। और आपने एक कंडीशन कहा था खुर में प्रॉब्लम,
1: हाँ।
0: तो खुर में भी 2 तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तो खुरहा चपका रोग होता है जिसमें खुर में भी घाव होंगे और मुंह में भी घाव होगा। बकरियों को रेगुलर बांध के रखेंगे तो वहाँ पे ये फुटरॉट होने की संभावना है, तो उसमें साफ सफाई सूखा रखना है ना कम रहेगी। अगर ग्रसित पशु है तो उसको आपको नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर आपको उसका इलाज कराना है, ट्रीटमेंट करना है। वो खुद सीख के आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर कभी कृषि विज्ञान केंद्र में आप आ सकते हैं, चतरा कृषि विज्ञान केंद्र में, और हम लोग 2 से 5 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम करते हैं। आप यहाँ आके अपने आप को एनरोल करा सकते हैं और निःशुल्क प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त कर सकते हैं।
1: चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुमूल्य समय देकर बकरी पालन के बारे में बताया, जिसमें नस्ल और बकरी की बीमारी से हम कैसे बचाएंगे, और किसान जो है बकरी पालने से पहले प्रशिक्षण की भी आप व्यवस्था आपने बताया कि 5 दिन के हमारे यहाँ प्रशिक्षण है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
2: वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन, अभी आप सुन रहे थे इस विषय से संबंधित ली गई भेंटवार्ता, और अब इसी के साथ हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग, सूचना के साथ मनोरंजन। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे राज्य केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बाघेल ने बताया कि आज शाम मुख्यमंत्री आवास में सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने सेवानिवृत्त होने वाले कोयला कर्मियों को समय पर पीएफ और पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से एक वर्ष पहले ही उनके अभिलेखों का सत्यापन और अद्यतन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सीएमपी पीएफ मुख्यालय ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। खूंटी जिला के तुरपा से विधायक सुदीप गुड़िया ने आज एक समारोह में 7 एम्बुलेंस और 3 शव वाहनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। पूर्वी सिंहभूम जिले के रहरगोड़ा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। देवघर जिले से पुलिस ने बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश को विफल करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी में एक अवैध देशी पिस्तौल और एक कारतूस बरामद किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, संध्या के 6:03 हुए हैं। लीजिए पेश है हमारे श्रमिक भाई बहनों को संबोधित करता कार्यक्रम मेहनत कस।

कार्यक्रम मेहनत कर सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को, हमारे तमाम श्रमिक भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार जोहार। दोस्तों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले आइए आप तमाम श्रोताओं को अपने श्रमिक भाई बहनों को सुनवाते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में गाया ये प्यारा सा गीत।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर आप सभी श्रमिक भाई बहनों को हमारा सादर प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, यह मंच उन हाथों को सलाम करता है जो हर रोज पसीना बहाकर इस देश की तकदीर लिखते हैं। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक बिना रुके, बिना थके देश के विकास का पहिया घुमाने वाले आप सभी श्रमिक भाइयों का, आप सभी श्रमिक साथियों का आज के इस कार्यक्रम में हमारा सादर प्रणाम। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत की स्याही से जो अपनी तकदीर लिखते हैं उनके हौसले कभी फीके नहीं पड़ते। आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम बात करेंगे अपने देश के सच्चे हीरो यानी हमारे श्रमिक और मजदूर भाई बहनों की, खासकर उन भाई बहनों की जो हमारे देश के असंगठित क्षेत्रों में लगे हुए हैं, काम करते हैं, और जानेंगे उनके अधिकार और उनके जीवन जिंदगी से जुड़े हर छोटी बड़ी बातों को। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भाई बहनों जैसे दैनिक मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, कृषि श्रमिक और घरेलू कामगारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें ई श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इन असंगठित क्षेत्रों में ये जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसके मुख्य लाभ क्या हैं और वो योजनाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। तो ई श्रम कार्ड या संगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है जिसके तहत श्रमिक को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ई श्रम कार्ड जारी किया जाता है जिससे भविष्य में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें सीधा मिलता है। इसके साथ ही 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी श्रमिकों को दिया जाता है। दूसरी योजना है पेंशन और वृद्धावस्था सुरक्षा योजना, जिसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है जिसमें 18 से 40 वर्ष के आयु के श्रमिक इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें उम्र के हिसाब से 55 रुपये से 200 रुपये का मासिक अंशदान करना होता है और इतनी ही राशि केंद्र सरकार से भी मिलती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 की सुनिश्चित पेंशन श्रमिकों को दी जाती है। इसके अलावा जो है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जिसके तहत आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामांकित परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना है, इसके तहत पात्र श्रमिक परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलता है। दोस्तों, आगे हम कार्यक्रम में जानेंगे रोजगार और आजीविका से संबंधित योजनाओं के बारे में, लेकिन उसके पहले अब आइए हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है अग्निशामक यंत्रों से जान माल की सुरक्षा के उपाय।
1: श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि सरकारी, गैर सरकारी और निजी भवनों में लगाया गया अग्निशामक यंत्र सुरक्षा की दृष्टि से काफी जरूरी है, और यह क्या चीज है, यह कैसे काम करती है, इन सभी सवालों के जवाब हेतु आज हम बातचीत करते हैं मोहम्मद सोहराब खान जी से, और ये बताएंगे कि ये क्या चीज है और ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले सोहराब खान जी, आपको हमारा और हमारे आकाशवाणी की तरफ से नमस्कार, आदाब।
2: सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: हाँ, हम ये जानना चाह रहे थे कि आप जो है अग्निशामक यंत्र के रखरखाव के बारे में आप बहुत सारी जानकारी

0: भी आपके पास है और आप लोगों को जागरूक भी करते हैं, और आपका एक दुकान भी यहाँ पर इंदरपुरी से थोड़ा आगे
1: पगमल रोड में जो विशाल मेगा मार्ट है उससे जस्ट आगे मैं राइट हैंड साइड में।
0: तो आप जो है सो इसके बारे में आप ये बताएं कि आपने कहाँ से शिक्षा दीक्षा लिया, अभी तक आप कहाँ कहाँ तक क्या पढ़ाई की है इसके बारे में।
1: हमारा जो बेसिक क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स में, उसके बाद जस्ट हमने अच्छे परसेंटेज नहीं आने के कारण मैं नेट और आगे पढ़ाई चालू नहीं रख सका, तो हमने एक अलग सेक्टर जो कि फायर से रिलेटेड था, सेफ्टी से रिलेटेड था, उसका एक कोर्स किया जो कि जमशेदपुर में न्यू यूनिशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उससे हमने डिप्लोमा का कोर्स किया फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का। और गुजरात से फिर मैंने एक एडिशनल कोर्स किया डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। छोटी छोटी जो भी डिग्रियां होती है उससे हमने अपने आप को अपडेट किया।
0: सौरभ खान जी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो इसके जो तकनीकी पहलू हैं और इसके साथ साथ जो व्यवहारिक पहलू हैं इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, तो आपके हिसाब से या तकनीकी जानकारी के हिसाब से आग के कितने प्रकार होते हैं?
1: देखिए, आग के प्रकार के जानने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि आग होता कैसे है, लगता कैसे है। आग अचानक नहीं लगता है, उसके लिए मिनिमम तीन चीज का होना जरूरी है। सबसे पहले ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ में कोई ईंधन, आग को जलने के लिए कोई फ्यूल या कोई ईंधन का होना जरूरी है। ये दो चीज होने के बाद तीसरा चीज आता है हीट का, यानी कोई गर्मी का। अगर वो तीन चीज जब तक एक साथ नहीं रहता तब तक आग लगेगा ही नहीं, और ये तीनों चीज का एक चेन है जिसको फायर ट्रायंगल हम लोग कहते हैं, जिसमें फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीनों चीज आता है। अगर कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहले हम लोगों को उसका हीट को रिमूव करना पड़ता है।
0: अच्छा, तो उसको कैसे करते हैं?
1: उसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से करते हैं और देखते हैं कि क्या, अगर कोई बंद कमरे में आग लगी है तो उसका एग्जॉस्ट, उसका विंडो खोल करके हम लोग उसके हीट को, पैकिंग जो रहता है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है उसका फ्यूल को रिमूव करना। अगर जहां आग लगी हुई है और वो छोटा सामान कोई रखा हुआ है और उस कमरे में या उस ऑफिस में बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ, तो कोशिश करते हैं कि जिसमें और आग लग सकता है, तो ये कॉमन सी चीज़ हर घर में अगर कहीं भी आग लगता है तो घर वाले जो आग लगा हुआ उसको तो नहीं बचाते हैं, पहले जो नहीं लगा उसको उठा के ले आते हैं। उसका दो सेंस है कि उनकी जो बेशकीमती सामान है वो बच जाए और दूसरा आग और ना लगे, उसके लिए कोई सामान ही ना बचे, तो ये दो चीज़ बचती है। तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन को हटाना। ब्रह्मांड पूरे ऑक्सीजन भरा हुआ है लेकिन उसको हटाने का कोई माध्यम नहीं है, हम लोग यही जानते हैं।
0: दो तिहाई जो है पृथ्वी में पानी भरा हुआ और बाकी ब्रह्मांड में ऑक्सीजन तो बहुत आयत है,
1: तो उसको हटाने के लिए ही जो स्रोत का यूज होता है उसको हम लोग अग्निशामक यंत्र कहते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जाना जाता है, जो मैक्सिमम ऑफिसेज कॉरपोरेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज में कंपलसरी है कि इसको रखना ही रखना है, जो हमारे जान माल दोनों का सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा चीज आता है कि इसका क्यों जरूरत पड़ता है फायर एक्सटिंग्विशर का, तो सबसे पहले हम लोगों को कितने तरह का फायर होता है उसको जानना जरूरी है, और किस फायर को, किस आग को, किस एक्सटिंग्विशर से, किस अग्निशामक यंत्र से बुझाने के रूप में आता है उसको जानना जरूरी है, और कैसे हम एक अग्निशामक यंत्र को इस्तेमाल करें ये जानना जरूरी है, और इसका रख रखाव सबसे बड़ा है, इसका रख रखाव कि किस तरह से हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को रख रखाव करें कि ये लंबे समय तक सर्विस दे सके, अपना योगदान दे सके, और मेन जब समय जब काम करता है जी, जब जरूरत पड़ता है इसका, उस जरूरत में ये काम ही अगर ना आए तो वो कैसे हम कहेंगे ये अग्निशामक यंत्र का हम लोग इस्तेमाल कर पाए।
0: तो यहाँ दो बातें होंगी कि अग्नि के प्रकार के हिसाब से, जैसे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो बीमारी के हिसाब से दवा देते हैं, तो क्या उसी तरह से है कुछ कि अग्नि किस प्रकार से जली हो और उसमें हम उस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर
1: जी हम जी एकदम आप सही फरमा रहे हैं। जितने तरह पहले हम क्लास ऑफ फायर के बारे में बात करते हैं, उससे पहले कि जो अग्निशामक यंत्र है उसका इस्तेमाल कोशिश करें कि वैसा नौबत ही ना आए कि हमको उसको इस्तेमाल करना पड़े
0: जी, ये तो सबसे
1: सबसे पहला चीज एहतियात जो हम लोग बरतते हैं, क्योंकि एक छोटा सा फैमिली है, आज के टाइम में हर घर में

0: एक गैस मिलेगा ही, स्टोव, हीटर, ये सब जनरल यूज़ की चीज़ें हैं, वो हर घर में रहता ही है। तो घर के जो भी लेडीज़ हैं या जो भी जेंट्स हैं, आजकल हॉस्टल में लड़के लोग कोई भी खाना बनाने के लिए वो सब सामान रखते हैं जो अत्यंत ही ज्वलनशील रहती है, और उससे भी आग लगने का संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो पहला चीज़ है कि हम लोग प्रिवेंट करें उस चीज़ को कि कैसे उससे बचाया जाए। हो जाने के बाद तो क्योर कोई भी कर सकता है, उसके बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को अगर आग से बचना है तो सबसे पहले एक गुड हाउसकीपिंग का कंसेप्ट दिमाग में रखना होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। ऐसा नहीं है कि जहाँ हमने ज्वलनशील पदार्थ रखा है वहीं हम कोई चलती हुई मोटर रखे या फिर माचिस या जलाने का कोई सामान ज्वलनशील पदार्थ भी रख दी हो कि दोनों इन फ्यूचर में कभी भी अगर ऐसा होता है कि आग लगा तो वो दोनों एक दूसरे का साथ दे करके,
1: जैसे कहा जाता है कि आग के बगल में बारूद नहीं रखना चाहिए।
0: जी जी वही है,
1: या कोई हीट है उसके बगल में माचिस ना रखें।
0: जी जी जी,
1: तो
0: जी,
1: ये तो हो गया कि मुसीबत को बुलावा अगर
0: बुलावा देते देने
1: तो
0: वाले।
1: फिर
0: हाँ हाँ,
1: फिर हम उससे फिर कैसे बचेंगे?
0: तो अब गुड हाउसकीपिंग के कंसेप्ट के बाद जस्ट दूसरा चीज था आज के टाइम में जो की बहुत ही बुरी चीज है, धूम्रपान। जो जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको तो नुकसान होता ही, बस में बगल वालों को भी नुकसान होता है जो उनके आसपास में रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनका ये एक आदत सी बन गई है और जो कॉरपोरेट में वो लोग काम कर रहे हैं तो एक अच्छा चीज़ ये किया गया है कि उनके लिए एक अलग से प्लेस दे दिया जाता है।
1: अच्छा, ये हो गया कि अभी आप बताए कि जैसे अगर हम गुड हाउसकीपिंग करते हैं, अगर सही सामान को सही जगह पर रखते हैं तो आग लगने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन आग के प्रकार कौन कौन से हैं और कौन कौन से आग में हम किस तरह के अग्नि सामग्री यंत्र का हम प्रयोग करेंगे?
0: देखिए, अभी जो अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग में फायर को 5 भागों में बांटा गया है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी एंड क्लास के। क्लास ए फायर में हम लोग कपड़ा, लकड़ी, पेपर, रबर इत्यादि से, प्लास्टिक इत्यादि से जो आग लगता है उसको हम लोग क्लास ए फायर में रखते हैं, और इसका जो फायर एजेंट है वो है पानी। ऐसा नहीं है कि अगर ये इन चीज़ों पे अगर आग लगती है तो आप काफ़ी कॉस्टली मटेरियल आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फॉर्म टाइप गैस, वो काफ़ी महंगा आता है, तो इस चीज़ों में हम उसका इस्तेमाल ना करें, पानी हम इजली हम इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है क्लास बी फायर, जो कि मोटर गैसोलीन और अल्कोहल टाइप का फायर होता है, जो इन ईंधन के द्वारा आग लगता है उसको हम लोग क्लास बी फायर में रखते हैं। इसको हम लोग ड्राई केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं। तीसरा आता है क्लास सी फायर, जो कि इलेक्ट्रिक के द्वारा आग लगता है। इसको कभी भी हम लोग फायर को, इस तरह का फायर को हम लोग पानी से ना बुझाएं, क्योंकि इसको ग्राउंड कंडक्ट मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके लिए स्पेशली ड्राई केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको हम लोग इस्तेमाल करना पड़ता है। चौथा आता है क्लास डी फायर, जो कि सोडियम और पोटाशियम मैग्नीशियम का से बना फायर को कहते हैं, और पांचवा और अंतिम जो है क्लास के फायर होता है, जो कि किचन और किचन के जो ग्रीस और ऑयल से जो आग लगती है उसको क्लास के फायर में रखते हैं।
1: तो अब हम किसी भी अग्निशामक यंत्र को हम उसको जो इस्तेमाल करते हैं उसका पद्धति क्या है? उसका
0: पहला
1: अग्निशामक के होते हैं,
0: अग्निशामक यंत्र को इस्तेमाल करने से पहले हम ये बात करेंगे ये कितने तरह का होता है। ये टोटल 2 तरह का होता है, एक फिक्स्ड इसका इंस्टॉलेशन होता है और दूसरा पोर्टेबल होता है। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, सिनेमा घरों में और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वगैरह में। ये कंपलसरी है कि आपको इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर लगाना ही चाहिए, और आए दिनों में भी जितने बिल्डर्स हैं वो लोग तो बहुत अच्छे बड़े बड़े मॉल में, बिल्डिंग में इसका काफ़ी अच्छा मतलब लोग लगा रहे हैं, बिल्डर फैसिलिटी दे रहे हैं। और पोर्टेबल जो है वो आपके एक छोटी छोटी गाड़ियों में जो 4 व्हीलर है उसमें भी आप पोर्टेबल देखते हैं, एक छोटा सा 2 किलो का, 1 किलो का जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रहता है वो रहता है पोर्टेबल, जिसको आप कहीं भी लेकर आ जा सकते हैं।
1: अच्छा, ये तो आप जो बता रहे हैं पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, जब बिजली लगता है, बिजली से जब करंट उत्पन्न हो तब हम क्या प्रयोग करेंगे, और जब किचन में अगर आग लग जाए तो हम क्या प्रयोग करेंगे, इस तरह से आग

0: के अगर प्रकार की हम बातचीत करें और उसको बुझाने के तरीके की अगर हम बातचीत करें, तो वो आप बताएं कि हम किस तरह के अग्नि सामग्री यंत्र को हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे और इसको कैसे चयन कैसे करेंगे?
1: जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का
0: उसका कुछ
1: अगर
0: पहचान या कुछ
1: प्रकार
0: कलर
1: का बात
0: वगैरह होता
1: करें,
0: होगा? जी
1: जी, क्योंकि पहले हम ये बात करें, फायर एक्सटिंग्विशर कितने तरह का होता है? ये 5 तरह का होता है। एक वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, ये फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और लिक्विड पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, जो स्पेशली किचन के लिए यूज़ होता है।
0: अच्छा,
1: और अब हमें नहीं मालूम है कि ये कौन से क्लास के फायर का एजेंट है, तो इसके लिए हमें कलर कोडिंग को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करें, तो आराम से हम अपने आग पे काबू पाने के लिए सही फायर एक्सटिंग्विशर का, अग्निशामक यंत्र का चयन कर
0: तो
1: सकते हैं।
0: उसका कोड क्या है?
1: तो क्लास ए फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर मशीन में जो कलर कोड रहेगा वो रेड रहेगा। दूसरा क्लास बी
0: पहला
1: फायर,
0: जो पानी के
1: जो
0: लिए,
1: पानी
0: पानी से
1: लकड़ी रबर
0: बुझाए।
1: प्लास्टिक के लिए जो रहता था, दूसरा जो है आपका ऑयल एंड गैसोलीन जो है क्लास बी फायर, उसके लिए क्रीम कलर का कोड रहेगा। उसमें कलर कोड उसका क्रीम रहेगा, जिसको हम लोग फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तीसरा जो हमने बात किया वो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, जिसका कलर कोड ब्लू है, जो कि किसी भी क्लास के फायर पे इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, जो मैक्सिमम ऑफिसेज वगैरह में और शॉपिंग मॉल वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका कलर कोड ब्लैक रहता है, जो ये भी तीनों तरह के, चारों तरह का जितने भी क्लास ऑफ फायर है सभी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरा रहा कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका, अभी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अग्निशामक यंत्र अवेलेबल, पुराना जो लेटेस्ट पुराना जो टेक्नोलॉजी था उसमें ऊपर से वल्व खोलने के जैसा रहता है, वल्व को खोल करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नोजल से प्रेशर आता है, तो उसमें बहुत दिन से अगर रख रखाव में ध्यान नहीं देते हैं तो उसको खोलने में काफ़ी परेशानी आती है। फिर उसको ध्यान में रखते हुए जो नया अभी आया है वो प्रेशर गेज के हिसाब, उसमें मालूम भी नहीं चल पाता है कि ये एक्सपायर कम कर जाता है। तो
0: और ज्यादातर ये समस्या रहती है कि कभी
1: जब
0: कभी
1: जरूरत
0: तो
1: पड़ता है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो
0: नहीं
1: पाता
0: हो
1: है, लोग
0: पाता
1: बोलते हैं
0: है,
1: कि कोई काम का नहीं है,
0: कोई
1: लेकिन
0: काम
1: ऐसा
0: का नहीं।
1: ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर उसको रिसर्च करके ही बनाया जाता है और बनने के बाद उसका कभी ना कभी इस्तेमाल होता ही है। देखिए कोई भी अगर हम आप जिस जगह में हम रह रहे हैं हजारीबाग या झारखंड के आसपास के एरिया में, तो यहाँ पे इसका लोग अवेयर नहीं है, एजुकेट नहीं है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है। अगर घर का नाली जाम हो जाता है तो सबको मालूम है, जाम होगा तो कलकत्ता में मेरा भी पानी का स्टोरेज जो जाने वाला रास्ता है वो खराब होगा और परेशानी हमको होगी, तो उस वजह से, क्योंकि वो उससे अवेयर है। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज़ जानना होगा या लोगों को तक, जो हमारा जो माध्यम है कि ये नॉलेज यहाँ के लोगों को मिले कि कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में कोई भी ऑफिस में अगर उनके नज़र पड़ती है कि अग्निशामक यंत्र रखा है, तो कैसे पहचाने कि ये इस्तेमाल करने लायक है या नहीं। अगर उसमें प्रेशर, दो तरह का जो अभी फायर एक्सटिंग्विशर ज़्यादातर ऑफिस में
0: प्रचलित है।
1: मिलता है, प्रचलित है, एक तो कोई मीटर गेज नहीं लगा रहता है, तो उसको हम लोग एक ही उपाय है, उसका एक्सपायरी डेट देख करके हम लोग देख सकते हैं
0: पता लगा
1: कि
0: सकते हैं।
1: वो यूज करने लायक है या ना। क्योंकि कोई भी जिसमें प्रेशर गेज नहीं है उसका 1 साल की हम लोग एक्सपायरी डेट मानते हैं, और स्पेशली फिर उसके लिए अलग से ऑफिसर्स हैं जो उसको रिफिल करती है, प्रेशर चेक करती है और देखती है।
2: तो दोस्तों, भी आपने सुना भेंटवार्ता, जिसमें हम सुन रहे थे कि अग्निशामक यंत्रों से जानमाल की सुरक्षा के क्या है उपाय, और इस विषय पर जानकारी हासिल कर रहे थे हमारी ओर से प्रवीण कुमार मिश्रा, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे सोहराब खान। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब हम बात करते हैं उन मजदूरों के रोजगार और आजीविका के संदर्भ में। तो हम देखते हैं कि असंगठित मजदूरों के लिए सरकार के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को खुद अपना खुद का काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी के किफायती वर्किंग कैपिटल लोन उपलब्ध कराया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी योजना है मनरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत रोजगार की सुरक्षा दी जाती है। तीसरा जो अभी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वह है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। युवाओं और श्रमिकों को उद्योग आधारित कौशल प्रदान कर रोजगार के काबिल बनाया जाता है इस योजना के तहत। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि असंगठित क्षेत्र में हमारे जो श्रमिक भाई बहन होते हैं उनके रोजगार और आजीविका के लिए, बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, पेंशन और वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए और सामाजिक और डिजिटल पहचान के लिए सरकार की मुख्य योजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही हैं। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम मेहनत कश से हमें विदा लेने का। तो चलते चलते आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: नाम ले। जिन हाथों में सबके चित मत, जिन हाथों का नाम ले। मेहनत से मत डर बंदे, हिम्मत से काम ले।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे श्रमिक भाई बहनों को संबोधित करता कार्यक्रम मेहनत का सर। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:30 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाज में।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म फना से लिया गया ये खूबसूरत सा गीत, आवाज़ें थी सुनिधि चौहान और सोनू निगम की। अभी सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है कहीं प्यार ना हो जाए।

दोस्तों भी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाया ये खूबसूरत सा गीत। अब आइए सुनते हैं कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में गाया कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म दुश्मन से।

दोस्तों, भी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाया ये खूबसूरत सा गीत। अब आइए सुनते इस कार्यक्रम का अंतिम नगमा लता मंगेशकर और विपिन सचदेवा की आवाज में।

सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:55 होने को है। कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार और फिर जिले में आजकल।

0: विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दिखा?
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। भाजपा का दावा, विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का राज्य के विभिन्न जगहों पर हुआ स्वागत। कहा, भाजपा के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आएगी झारखंड की जमीन। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का किया उद्घाटन। हर नागरिक से की राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान का हिस्सा बनने की अपील। 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की जताई आशंका। और झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बाघेल ने बताया कि आज शाम मुख्यमंत्री आवास में सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है।
11: हाँ हाँ, मुख्यमंत्री तो हमारे सबके नेता हैं भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा को नेता कहें लेकिन गठबंधन के भी नेता हैं हमें, तो सभी हमारे जितने 56 विधायक हैं सबके बैठक बुलाए हैं, शाम को हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। जब सारे विधायक रहेंगे, सारे गठबंधन के नेता लोग रहेंगे, क्लियर है दोनों सीटें हम जीतेंगे।
7: इधर भाजपा के नेता भानु प्रताप शाही ने दावा किया कि राज्यसभा की दूसरी सीट उनकी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं।
12: मंत्री संपर्क में, आप विधायक की बात बोलते हैं, दो तीन को मंत्री का नाम हम बता देंगे जो हम लोगों से संपर्क में। तो हेमंत जी को भी सलाह देता हूँ मित्रवत कि भाई बच जाओ, नहीं तो ये काला नाग ऐसा डसेगा ना कि कहीं के लायक नहीं रहोगे। लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि झारखंड के चारों तरफ कमल खिल गया है, झारखंड में कमल खिलाना बाकी।
7: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा के लिए झारखंड की जमीन निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य लेकर आएगी। पत्रकारों से बातचीत में आज श्री नवीन ने दोहराया कि भाजपा ने ही झारखंड राज्य गठन के लिए संघर्ष किया और वही इसे संवारेगी भी।
13: रांची मेरे लिए दूसरा घर है और भाजपा के इस गढ़ में फिर से कमल कैसे उसी स्वरूप में खिले, उसके लिए मुझे संकल्पित होना था। कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह के साथ हम लोग के साथ संवाद किया, मैं मानता हूं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें फिर से उसी प्रकार से हम मजबूत करने में सफल होंगे।
7: इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, इस दौरे से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं।
14: राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड के प्रवास में है और निश्चित रूप से संगठन को, कार्यकर्ताओं को और युवा कार्यकर्ताओं को काफी प्रेरणा मिल रहा है, काफी उत्साहित है कार्यकर्ता और आने वाले दिनों में उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से झारखंड के भविष्य के प्रति अपना योगदान और अच्छे ढंग से हो सकेगा।
7: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में श्री सेठ ने कहा कि फिट इंडिया केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने

0: के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। हजारीबाग स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए एमबीए और बीबीए पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एमबीए के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तथा बीबीए के लिए 5 जुलाई निर्धारित की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भारतीयों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि इससे गरीबों का जीवन प्रभावित होगा।
2: क्या बढ़ जाएगा पेट्रोल गैस का दाम, एलपीजी का दाम, जबकि क्रूड ऑयल नीचे की ओर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी हैं, उसके बावजूद बढ़ोतरी है। तो पूछिए जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, गरीबों का खून चूसने पर आमादा है, दो चार उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार चला रहे हैं, उनका कर्ज माफ कर रहे हैं।
0: इधर भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले अभी भी भारत में घरेलू गैस काफी कम कीमत पर मिल रही है।
3: उनको एक एलपीजी घरेलू उपभोक्ता को बेचने में 870 रुपए प्रति सिलेंडर का नुकसान हो रहा है। तो एक छोटी सी कोशिश है इस भरपाई को करने की, क्योंकि इकोनॉमी पे प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अगल बगल के देशों में, महाशक्तियों में भी जहां अभी गैस के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, हमने बहुत मामूली बढ़ोतरी की है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थितियां बेहतर होंगी, हम ये जो है प्राइसेस जो है स्टेबलाइज हो जाएंगी।
0: खूंटी जिले के तोरपा से विधायक सुदीप गुड़िया ने आज एक समारोह में 7 एम्बुलेंस और 3 शव वाहनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। संभावना जताई जा रही है कि 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून दस्तक दे सकता है। झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर-17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता के 45 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के प्रशिक्षु अनूप ने सभी मुकाबले तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीतते हुए खिताब अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। भाजपा का दावा, विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राज्य के विभिन्न जगहों पर हुआ स्वागत। कहा, भाजपा के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आएगी झारखंड की जमीन। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का किया उद्घाटन।

0: हर नागरिक से की राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान का हिस्सा बनने की अपील। 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की जताई आशंका। और झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: RBI कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: विश्व पर्यावरण सप्ताह 2026 के अवसर पर जमशेदपुर वन प्रमंडल एवं एलिफेंट प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में दो मुहानी नदी तट के क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में वन विभाग के अधिकारियों, वन कर्मियों, स्वयं सेवकों तथा स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर क्षेत्र की साफ सफाई में योगदान दिया। इस दौरान DFO सबालम अंसारी ने लोगों से नदियों को स्वच्छ और पर्यावरण को संरक्षित रखने की अपील की।
2: विश्व पर्यावरण सप्ताह 2026 के अवसर पर हम लोग आज सफाई अभियान का कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग दो मुहाने से लेकर के डोबो पुल तक सफाई अभियान, स्वर्णरेखा नदी के किनारे जितने भी प्लास्टिक वगैरह पड़े हुए हैं और जितने भी कचरे पड़े हुए हैं सभी को उठाने का कार्य कर रहे हैं।
1: जमशेदपुर के GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 15वीं झारखंड स्टेट सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। प्रतियोगिता का आकर्षण दो बच्चों की मां सोनल मिश्रा रही, जिन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में 4 पदक जीते। सोनल ने कहा कि बच्चों के साथ तैराकी शुरू करते समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें पदक भी मिलेगा।
3: 400 मीटर फ्री स्टाइल में मैं सेकंड पोजीशन लाई हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रही हूँ। बच्चे आते थे पुल में, इसीलिए मैंने भी तैरना शुरू कर दिया था। एक घंटे बैठने से बेटर है कि मैं तैर लूँ। तब कभी सोचा नहीं कि यहाँ तक पहुँच जाऊंगी।
1: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्वी सिंहभूम के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के युवा मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को देश के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं।
4: मोदी गवर्नमेंट के 12 साल के कार्यकाल से मैं बहुत खुश हूँ और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से युवाओं के लिए स्किल इंडिया और मुद्रा लोन जैसे योजनाओं से लोगों को आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल रहा है, जिससे हमारा देश और तेजी से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का जो मिशन है वो अच्छी तरह से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
1: जमशेदपुर के सेंटर फॉर एक्सीलेंस में ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल और निशान के संयुक्त तत्वधान में आयोजित सप्ताहव्यापी थिएटर आर्ट एंड क्राफ्ट कार्यशाला 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कार्यशाला के दौरान तैयार किए गए कस्टम मास्क, स्टेज क्राफ्ट और अन्य कलात्मक सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
5: निशान संस्था और ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल मिलकर के एक 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसका विषय था जो नाटक के अंदर में आर्ट एंड क्राफ्ट का जो उपयोग होता है उसके बारे में। अभिनेता को लोग देखते हैं लेकिन उस अभिनेता के अभिनय को निखारने के लिए जो पीछे काम होता है बैक स्टेज में, उसके लिए वर्कशॉप था।
1: बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ग्रामीण किसानों को उनके आमों के लिए बेहतर बाजार

0: उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन ने इस वर्ष भी झारखंड के आम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, संध्या के 7:15 और 40 सेकेंड हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम झनकार।

जवानी तो इश्क होना है, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वेलकम टू जंगल से।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में फिल्म पेड़ी से लिया गया ये गीत। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम नगमा जिसे हमने लिया है फिल्म स्त्री 2 से।

दोस्तों, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम झनकार FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत पंकज दास और साधना सरगम की आवाज में, जिसे हमने लिया फिल्म मोहरा से।

दोस्तों, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में फिल्म दुश्मन से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

सर झुकता नहीं। इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा पंकज उदास और लता मंगेशकर की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

सुने थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 8:08 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला।

0: इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म संगीत का सफर यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: This is Akashwani. In the special series, 12 years of the Modi government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
2: Ye Akashwani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
4: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानते हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ

0: अभियान चलाते हैं या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप।
0: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं,
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है, और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था। आज ये करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप QR कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहां तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल,
1: और इसमें मेरा ख्याल है AI की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो AI और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा AI इंडिया इम्पैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ TB, मलेरिया इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में AI टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन TB अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया, स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने AI ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया, उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में TB का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो AI सपोर्टेड AI ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहां पे AI कैसे मदद करता है कि AI टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, AI टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक CHO को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या AI की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पर इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 170,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 182,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है। ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो

0: या लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी की जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड-19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलियंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने यह तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो। जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है।
1: जी।
0: और यहां तक कि जब

0: दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है, तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं, जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेज है, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान, बीड़ी, मसाला, शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेलकूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं।

0: मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं और से क्या कहना चाहेंगी?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन स्पेशल सीरीज 12 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट You were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: इसी के साथ हमारा विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोस्तों, अब से कुछ ही देर में क्रमशः आप हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें career airforce.

0: gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4वां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालेंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के लोग दीवाने रहे हैं।

अमृता राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अंधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सोफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर ये पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहां परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन पर वो नजर आने लगी, पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आईं और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब की बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे, जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई, जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर उन पर गई।

इसके बाद आई राजकुमार संतोषी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्ने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

साल 2003, कैन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई, इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर की ये पहली फिल्म थी और उनकी पहली हीरोइन बनी अमृता राव।

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थी। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना। और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था ये गाना।

जाने माने निर्देशक मिलन लुथरिया ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे अभिनेताओं को लेकर एक फिल्म बनाई दीवार। जाहिर है कि लोगों को यश चोपड़ा की दीवार जरूर याद आई होगी, पर ये नए जमाने की दीवार थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी बिल्कुल अलग थी और इस फिल्म में भी थी अमृता राव।

साल 2005 में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी, निर्देशक थे महेश मांजरेकर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे शाहिद कपूर और संजय दत्त। फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथन लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, बिपाशा बसु और शाहिद कपूर।

साल 2006 एक बार फिर इंद्र कुमार लेकर आए फिल्म प्यारे मोहन, जो हॉलीवुड की आर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इवल हियर नो इवल पर आधारित थी। इस फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबेरॉय थे, ईशा देओल और अमृता राव

साल 2006 राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म आई विवाह। इस फिल्म में अमृता राव के दूल्हे बने थे शाहिद कपूर।

एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की अतिथि। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृता राव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली भी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। और इसी बरस श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर।

अमृता राव एक सादगी और गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृता राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आई। 2009 में हरमन बवीजा के साथ वो नजर आई फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अक्षय खन्ना।

साल 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार कपूर।

इसके बाद कुछ फिल्मों में अमृता राव ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई, जैसे हे बेबी, लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अरशद वारसी के साथ वो नजर आईं सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी में। फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट, जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आईं अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं, जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत फंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीना ताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह किया है।

के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पी से फरमाइशी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाह सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म तेजाब से। इस गीत को सुनना चाहा है मालटोला खिरगांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल ने। इसी गीत की फरमाइश आई है चेपा कला बड़कागांव से बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, प्रियंका और दीपिका की ओर से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है छत्तीसगढ़ भाटा पारा दंतरेगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। तो आइए इन तमाम श्रोताओं के पसंद पर सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में फिल्म तेजाब से लिया गया ये गीत।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

दोस्तों भी आपने सुना अलका याग्निक की आवाज में फिल्म तेजाब से लिया गया ये फरमाइशी गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा जिसे हमने लिया है फिल्म थानेदार से। और इस गीत को सुनना चाहा है बिरुआ कॉलोनी चानू हजारीबाग से कुणाल तिवारी सीमा तिवारी आराध्या और उनके ढेर सारे मित्रगण। इसी गीत की फरमाइश आई है कलाम अहमद पंचबंदी रोड हजारीबाग से कलाम अहमद आरजू नीलोफर परवीन आरजू एहसान अहमद आरजू हबीबा खातून आरजू इरफान अहमद आरजू शबाना परवीन आरजू और फिरोज अहमद आरजू की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहे छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा ने। इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज शाहिन सुल्ताना सोनू तस्नीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिम ने। तो आइए

0: कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना, शादी है बर्बादी। दी दी दी एंड। शेर था चूहा हो गया।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना अमित कुमार की आवाज में फिल्म थानेदार से लिया गया ये खूबसूरत सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा, और इस गीत को सुनना चाहा है रेलवे स्टेशन हजारीबाग से शमीम अहमद, सगुफ्ता परवीन, नूरजहां बेगम, तहसीन बानो, खलील अहमद, एहसान अहमद, आरजू परवीन और नसीम अहमद ने। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। इसी गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। इसी गीत की फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की ओर से, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लिवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दंतरेगी से भागवत वर्मा की ओर से। तो आइए इन तमाम श्रोताओं के पसंद पर सुनते हैं ये फरमाइशी गीत।

और दोस्तों भाई, सुनते इस गीत, इस कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत और इस गीत को सुनना चाहा है झुमरी तिबिया से जगन्नाथ प्रसाद साहू ने, ओल्ड लिसनर ग्रुप मगनपुर से अमजद अली और अब्बास आलम ने। इस गीत की फरमाइश आई है आज आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा की ओर से।

दोस्तों इसी खूबसूरत से गीत के साथ फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी चार्ज अपने दोस्त संजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों, भी आप सुन रहे थे फरमाइसी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम शामी गजल।

दोस्तों, भी आप सुन रहे कार्यक्रम शामी गजल हमारे आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शामी गजल FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और फिर अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर

0: ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।